शुभ प्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 28 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। FM शिमला पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमरीका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने

0: different World Cup tournaments with his goals, adding another impressive accomplishment to his storied career. He was named Man of the Match. And that is the end of this news bulletin.
1: पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दिन की मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ आइए एक नए दिन का आगाज करते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि के साथ। सबसे पहले आराधना करते हैं विघ्नों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले देवों में सबसे प्रथम पूज्य गौरी पुत्र गणेश जी की।

हर एक व्यक्ति का भाग्य उतनी ही बार बदलता है जितनी बार वो परमात्मा को सच्चे मन से निरंतर याद करता है। इसलिए हमेशा परमात्मा को याद करते रहें।

जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तब उसके जीवन में शांति, सफलता और संतोष स्वयं आने लगते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि का। सुनते रहिए।

आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6:40 हो गए हैं FM शिमला पर। लीजिए सुनिए एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस का।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग चल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानी तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान, गायक स्वर लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और शोभना राव, संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला। FM शिमला पर लीजिए अब खुद को अपडेट कीजिए FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त IAS 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। राज्यों में बेवीर जी राम जी योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने और प्रदेश हितों के अनुरूप सुझाव तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। ये समिति 29 जून तक मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और सरकार के बीच हुई वार्ता विफल रही है। ऐसे में यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। इस बीच सरकार ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी ESMA के प्रावधान लागू किए हैं। पूर्व परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने परिवहन निगम कर्मचारियों पर ESMA लागू करने के निर्णय को कांग्रेस सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है और अब ESMA के सहारे उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कल शिमला में ऑकलैंड सुरंग के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 7.60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में 145 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं में रजोल अनूही जांगल बग्गा सड़क और इसी मार्ग पर बनने वाला पुल शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर कल श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंदर गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना मनोरंजन शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल

0: लिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। एफएम शिमला पर लीजिए अब सुनिए चिंतन।
4: देवराज इंद्र तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महर्षि दधीचि ने देह

त्याग किया। उनकी अस्थियां लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्र से अजेय प्राय वृतासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। ये सब बातें अपनी माता सुवर्चा से बालक पिप्लाद ने सुनी। अपने पिता दधीचि के घातक देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। स्वार्थवश ये देवता मेरे तपस्वी पिता से उनकी हड्डियां मांगने में भी लज्जित नहीं हुए। पिप्लाद ने सभी देवताओं को नष्ट करने का संकल्प करके तपस्या आरंभ कर दी। पवित्र नदी गौतमी के किनारे बैठकर तपस्या करते हुए पिप्लाद को दीर्घ काल बीत गया। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पिप्लाद को दर्शन देकर कहा, बेटा वर मांगो। पिप्लाद बोले, प्रलयंकर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोलें और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दें। भगवान आशुतोष ने समझाया, पुत्र मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूप में प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आह्वान मत करो, उससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। पिप्लाद ने कहा, देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व पर मुझे तनिक भी मोह नहीं। आप देवताओं को भस्म कर दें, भले विश्व भी उनके साथ भस्म हो जाए। पर मोदर मंगलमय आशुतोष हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। पिप्लाद ने हृदय में कपाल माली विरूपाक्ष त्रिलोचन अहिभूषण भगवान का रुद्र दर्शन किया। उस ज्वालामय प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिप्लाद को लगा कि उनका रोम रोम भस्म हुआ जा रहा है। उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षणों में चेतनाहीन हो जाएंगे। आर्त स्वर में फिर उन्होंने भगवान शंकर को पुकारा। हृदय की प्रचंड मूर्ति अदृश्य हो गई। शशांक शेखर प्रभु मुस्कुराते हुए सम्मुख खड़े थे। मैंने देवताओं को भस्म करने की प्रार्थना की थी प्रभु, आपने मुझे ही भस्म करना आरंभ कर दिया। पिप्लाद उलाहने स्वर में बोले। शंकर जी ने स्नेहपूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है और सदा वहीं से प्रारंभ होता है जहां उसका आह्वान किया जाता है। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार, मन के चंद्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय तथा अंग के अधिदेवता हैं। उन अधिदेवताओं को नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? बेटा इसे समझो, दूसरों का अमंगल चाहने पर पहले स्वयं अपना अमंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्य धाम में अनंत काल तक निवास करेंगे। तुम उनके पुत्र हो, तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए। यह सुनकर पिप्लाद ने भगवान विश्वनाथ के चरणों में मस्तक झुका दिया। चालाकी से या धोखा देकर कोई भी महत्कार्य संपन्न नहीं होता। बाहरी आडंबर और दिखाऊ बातचीत की चमक से लोगों को भुलावे में डाला जा सकता है, पर भगवान के साथ तो कपटता नहीं चलेगी, खुद ही ठगे जाओगे। साधन भजन सब फूटी कलसी में जल भरने के समान वृथा श्रम ही सिद्ध होगा। अक्लांत परिश्रम और पूर्ण आत्मोत्सर्ग द्वारा ही महत्कार्य साधित होते हैं।

उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। तो आप भी जाग जाइए जनाब, क्योंकि एफएम शिमला पर अब हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से वो खास कार्यक्रम हैं जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ ओनली ऑन वन।

103.7 megahertz. देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो सुबह 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। हिंदी में समाचार 12 बजे, 1 बजे, दिन में 2:15 और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार दिन में 12:05, 1:05, शाम 7:05 और रात्रि 11:05 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज एट 9। खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ सुबह 7:57, 8:30 और 9:57 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं हमारे साथ सुबह 9:20, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। वेल, आपकी सुबह को और भी हसीन और खुशनुमा बनाने के लिए आपके लिए हम लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:15 पर। पहाड़ों की वादियों से गूंजती लोक धुनों और लोक संस्कृति की मिठास लेकर हम आते हैं आपके लिए सुबह 8:32 पर लोक संगीत, 11:30 पर पहाड़ी संगीत और शिखरों के स्वर, दिन में 2:30 पर। वहीं संगीत की सुरीली दुनिया से कुछ एक से बढ़कर एक दिलकश फिल्मी तराने फिल्म संगीत में सुबह 8:45, दिन में 12:10, 3:10, शाम 4 बजे और रात 8:30 पर। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम महसूस करते हैं प्रकृति की खूबसूरती, उसके अनगिनत रंगों और उसके अनमोल उपहारों को। सैर करते हैं हम हिमाचल की किसी एक खूबसूरत जगह की, वो है आपका अपना कार्यक्रम कुदरत के रंग, जो हम लेकर आते हैं आपके लिए 9:30 पर। कुछ गीत गाइए गुनगुनाइए हमारे साथ ठीक 10 बजे गीत गाता चल कार्यक्रम में, और पुराने दौर के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे जहां हर गीत के साथ जुड़ी है सुनहरी यादें, लाते हैं आपके लिए 11:05 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। महिलाएं अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला सम्मेलन का इंतजार करती हैं जो पेश किया जाता है हर रोज 12:20 पर। 1:10 पर तैयार रहिए हमारे साथ म्यूजिक और मस्ती के लिए म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में, और संगीत के अलग अलग रंग बिखरेंगे एफएम शिमला पर दिन में 2 बजे सब रंग कार्यक्रम में।

युवा साथी युवानी कार्यक्रम सुनेंगे दिन में 3:30 पर। और रही हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होता है एफएम शिमला पर शाम 4:20 से, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम, 4:50 पर महास्वी कार्यक्रम, 5:20 पर किन्नौरी कार्यक्रम, 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम और 6:30 पर पेश किया जाएगा आपका अपना कुल्लूवी कार्यक्रम। किसान बागवान कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं शाम 7:10 पर। शाम की सभा का आगाज होता है एफएम शिमला पर 8:00 से, जहां पर सबसे पहले आपके लिए हम लेकर आते हैं गुजरे जमाने के कुछ अनमोल सुरीले नगमे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। एक फिल्म से ये कार्यक्रम आपके लिए 9:15 पर, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की किसी एक फिल्म की और सुनवाते हैं आपको उसी फिल्म के एक से बढ़कर एक गीत। आपके दिल की आवाज़ पहुंचेगी सीधे हमारे

0: दिल तक आपकी भेजी हुई मेल्स के माध्यम से रात 9:30 पर ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन में। इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपनी मेल्स के माध्यम से और सुन सकते हैं अपनी पसंद के कुछ बढ़िया बढ़िया से गीत। हमारी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है airfmshimla.musicmail@gmail.com। गजलों की हसीन और खूबसूरत महफिल सजेगी एफएम शिमला पर रात 10:00 और 10:30 पर। आनंद लीजिए सदाबहार फिल्मी नगमों का। जी हाँ डियर लिसनर्स, ये है वो कुछ खास कार्यक्रम जो आज आप सुन पाएंगे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, वही आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन जहाँ पर आप और हम होते हैं साथ साथ गीत संगीत के इस संगीतमयी सुरमयी सफर पर। तो आपकी सुबह को और भी हसीन और खुशनुमा बनाने के लिए लीजिए आ गए हैं हम आपका अपना फेवरेट गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम लेकर।

जी हाँ, सुबह की इस ताजगी भरी हवा, चाय की प्याली की खुशबू और नई उम्मीदों के साथ हम करते हैं आपका तहे दिल से स्वागत। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफर बबीता शर्मा, और इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा खास सुबह का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। देखिए लिसनर्स, हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। बीती हुई बातों को छोड़कर आज के दिन को मुस्कान और सकारात्मक सोच के साथ शुरू करने का मौका देती है। तो अगर आप भी अभी अभी जागे हैं तो उठिए, खिड़की खोलिए, इस ताजी हवा को महसूस कीजिए और अपने दिल से कहिए कि आज का दिन शानदार होगा। फिर आपका दिल बस यही गुनगुनाएगा। क्या गुनगुनाएगा, जरा खुद ही सुन लीजिए।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, बल्कि हर तारीख अपने साथ संघर्ष, उपलब्धि, खोज और प्रेरणा की कुछ अनगिनत कहानियां लेकर आती हैं। तो आइए जानते हैं आज के इतिहास क्या कुछ समेटे हुए हैं अपने आप में। जी बिल्कुल, आज है 24 जून सन 2026। 1314 में स्कॉटलैंड के राजा ने इंग्लैंड की सेना को हराकर स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता को मजबूत किया और ये युद्ध स्कॉटिश इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। आज ही के दिन 1497 में इटली के खोजकर्ता जॉन कैबॉट उत्तरी अमेरिका के तट पर पहुंचे और ये माना जाता है कि उन्होंने आधुनिक कनाडा के कुछ हिस्सों का अन्वेषण किया था। आज ही के दिन 1901 में आज ही के दिन दुनिया की पहली आधुनिक कला प्रदर्शनी में से एक पब्लो पिकासो एग्जीबिशन पेरिस में आयोजित हुई, जिसने कला जगत को एक नई दिशा दी थी। वहीं बात करें सन 1948 की, तो 1948 में सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की नाकेबंदी शुरू की, जिसे इतिहास में बर्लिन ब्लॉकेड के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना शीत युद्ध के शुरुआती बड़े संघर्षों में गिनी जाती है और भारत ने क्रिकेट विश्व कप में इतिहास रचा था आज ही के दिन। जी हाँ, इसी दिन इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हुई सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था और कुछ दिन बाद भारत ने विश्व कप जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जी हाँ, ये थी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई थी आज के दिन हमारे इतिहास में। आगे क्या कुछ है खास हमारे पास आप सभी लिसनर्स के लिए, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम और अब आपके रेडियो सेट्स पर हम भेज रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, तो सुनिए और आनंद लीजिए इस गीत का।

और डियर लिसनर्स, आज की इस खूबसूरत सुबह में अब हम बात करेंगे एक ऐसे गुरु की जो बिना बोले हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, जिसके पास ना कोई किताब है ना कोई स्कूल, फिर भी जिसकी हर चीज में छुपी है जिंदगी की सीख। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रकृति हमें क्या सिखाती है। तो चाहे की चुस्कियाँ लीजिए, दिल को थोड़ा सा शांत कीजिए और चलिए निकल पड़िए हमारे साथ प्रकृति की इस प्यारी सी दुनिया में। देखिए, सुबह जब सूरज निकलता है ना, तो वो हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। चाहे रात कितनी

भी अंधेरी क्यों ना हो, नई शुरुआत हमेशा होती है। सूरज कभी हार नहीं मानता, हर दिन फिर चमकता है, और यही जिंदगी है, क्योंकि हर सुबह अपने साथ उम्मीद लेकर आती है। क्यों, सही कहा ना हमने? पेड़ों को कभी ध्यान से देखेगा, वो खुद धूप सहते हैं लेकिन छाया दूसरों को देते हैं, पत्थर खाने के बाद भी फल देते हैं। कितनी बड़ी सीख है ना। अच्छे इंसान बनो, भले दुनिया तुम्हारे साथ कैसी भी हो। अब नदी की सीख सुन लीजिए। एक नदी, जी हाँ, एक नदी कभी नहीं रुकती। रास्ते में पत्थर आते हैं, पहाड़ आते हैं, फिर भी वो अपना रास्ता बना लेती है। नदी हमें सिखाती है, जिंदगी में चलते रहो, रुकना नहीं, थकना नहीं। तितली हमें क्या सिखाती है? तितली बनने से पहले उसे संघर्ष करना पड़ता है, एक छोटे से कीड़े से खूबसूरत तितली बनने तक। वो हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बाद ही खूबसूरती आती है।

चींटी की मेहनत। छोटी सी चींटी को देखो कितनी बार गिरती है लेकिन हार बिल्कुल भी नहीं मानती। मेहनत और धैर्य यही सफलता की चाबी है। पहाड़ क्या कहते हैं? पहाड़ हमेशा शांत रहते हैं, आंधी आए तूफान आए फिर भी वो डटे रहते हैं। तो हमें पहाड़ सिखाते हैं कि हमें मुश्किल समय में भी मजबूत बने रहना है।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश यही है, ये हमें सिखाती है कि लो कम और लौटाओ ज्यादा। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, नदियाँ पानी देती हैं और धरती भोजन देती है, और हम इंसान, हमें भी एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए। देखिए, प्रकृति किताब नहीं है लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए अपना और प्रकृति का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए FM शिमला, यूं ही हमारे साथ।
3: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
4: अच्छा, इसमें क्या होगा?
3: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
4: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई OTP देना होगा?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या OTP नहीं मांगा जाता।
4: अच्छा,
3: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
5: हो

एफएम शिमला पर एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि 9:30 पर आप सुनेंगे कुदरत के रंग। जी बिल्कुल, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम महसूस करते हैं प्रकृति की खूबसूरती, उसके अनगिनत रंगों और उसके अनमोल उपहारों को। सैर करते हैं हिमाचल की ये खूबसूरत जगह की, तो वो है आपका अपना कार्यक्रम कुदरत के रंग। कुछ गीत गाइए, गुनगुनाइए हमारे साथ, ठीक 10 बजे गीत गाता चल कार्यक्रम में। पुराने दौर के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे, जहां हर गीत के साथ जुड़ी है आपकी सुनहरी यादें, लाते हैं हम आपके लिए 11:05 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। महिलाएं अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला सम्मेलन का इंतजार करती हैं, जो पेश किया जाता है हर रोज 12:20 पर। 1:10 पर तैयार रहिएगा हमारे साथ म्यूजिक और मस्ती के लिए, म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में। युवा साथी युवानी कार्यक्रम सुनेंगे 3:30 पर। तो बस इन बड़ी

0: ऐसे कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर लीजिए अब सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त आईएएस 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और सरकार के बीच हुई वार्ता विफल रहने के बाद यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। इस बीच सरकार ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों द्वारा कल से हड़ताल पर जाने की घोषणा के बाद एचआरटीसी ने प्रदेश भर में बस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 656 अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने एक दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान रारंग में राज्य स्तरीय गुरु संन्यास मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। समारोह में राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिसमें नागरिकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रदेश में 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 8 बजने को हैं। समाचारों के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
0: सूचना मनोरंजन।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा।

0: और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2 लाख

0: 85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही

0: खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations

उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। ये समिति 29 जून तक मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और सरकार के बीच हुई वार्ता विफल रहने के बाद यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। इस बीच सरकार ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी ऐस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों द्वारा कल से हड़ताल पर जाने की घोषणा के बाद एचआरटीसी ने प्रदेश भर में बस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 656 अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। प्रदेश में 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। FM News हेडलाइंस के संख में इतना ही। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 MHz पर, और ये लोक धुन सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि एफएम शिमला पर अब हम लेकर आ गए हैं हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों का मीठा सा संगीत, लोक संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कमलेश कुमारी और साथी के गाए इस लोक भजन के साथ।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर आइए, अब आप और हम आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। जी हाँ, गीतों के उनमोल खजाने से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत हम लेकर आए हैं आप सभी लिसनर्स के लिए। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना दूसरा आदमी फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लीजिए सुनिए सरगम फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए आपको बता दें हमारे आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के कुछ मुख्य आकर्षण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:31 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। 10 बजे का समय रहेगा रिमझिम कार्यक्रम का। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर सुनिए लोक संगीत और 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम पेश किया जाएगा उमंग। महिलाएं अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगी महिला सम्मेलन दिन में 12:20 पर। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम पेश किया जाता है हर रोज दिन में 1:10 पर। दो बजे का समय रहेगा सुनहरी गिरने कार्यक्रम का और 2:30 पर आनंद लीजिए हिमगुंजन कार्यक्रम का।

शाम की सभा में 8 बजे आपके लिए लेकर आएंगे धारावी गीत। 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत और 8:30 पर लुत्फ उठाइए सुगम संगीत का। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता 9:30 पर और 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दस बजे सुनिए फिल्म संगीत और 10:30 पर सुरबहार कार्यक्रम।

जी हाँ, ये हैं कुछ खास कार्यक्रम जो आप सुन पाएंगे हमारे आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला से भी सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इन संदेशों के बाद
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
5: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
4: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
7: अच्छा, इसमें क्या होगा?
6: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
7: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
6: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
7: अच्छा,
6: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ ने आज रात 12 बजे से चक्का जाम करने का किया ऐलान। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया की शुरू। 1500 रुपए प्रतिदिन मानदेय निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने उठाए कई कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बावजूद जनादेश हथियाने का लगाया आरोप। और केंद्र सरकार ने कहा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित। सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निर्धार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यूनियन और राज्य सरकार के बीच कल हुई वार्ता विफल रहने के बाद यूनियन ने यह निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के तानाशाही रवैये के कारण विवश होकर चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है।
1: मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के ये हमें ले रहे हैं। हमें 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी राज्य की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: एचआरटीसी चालक परिचालक संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा के बाद निगम ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए 656 अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने भर्ती विज्ञापन जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। चयनित चालकों को विभिन्न डिपुओं में आवश्यकता अनुसार दैनिक आधार पर तैनात किया जाएगा। निगम ने चयनित चालकों के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन मानदेय निर्धारित किया है। ये नियुक्ति पूरी तरह होगी। एचआरटीसी प्रबंधन के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसी मकसद से यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन व किसानों को लाभान्वित करने के लिए बागवानी विभाग को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हारने के बाद भी जनादेश हथियाने का आरोप लगाया है। मंडी जिला के तत्तापानी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनावों के परिणाम आए 1 महीने का समय हो चुका है, मगर सरकार अभी तक ब्लॉक समिति, जिला परिषद व अन्य स्थानीय निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भाजपा समर्थित विजयी प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए विवश किया जा सके। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता संभालने के बाद 2500 से अधिक संस्थान बंद करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने ये सभी संस्थान जनता की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खोले थे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी अटल टनल देश दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता ने बताया कि इस टनल का दीदार करने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है।
3: कुल्लू जिला के मनाली से आगे धुंधी में बनी अटल टनल देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर बनी 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन किया था तथा सामरिक दृष्टि से भी ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ले को सेना की जरूरत

0: का सामान भी यहीं से होकर जाता है। अटल टनल रोहतांग अपने लोकार्पण के बाद से ही देश दुनिया के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी हुई है तथा मनाली घूमने आने वाले पर्यटक इस टनल का दीदार करना नहीं भूलते हैं। मनाली में इन दिनों पर्यटक सीजन चला है तथा हर दिन काफी संख्या में वाहन अटल टनल से आर पार हो रहे हैं। बीते सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार 3 लाख से अधिक सैलानी अटल टनल से आर पार हुए। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों में सक्रिय सहयोग का आश्वासन किया। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है। इस बीच मौसम विभाग ने कल यानी 25 जून से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर तेज हवाएं व अंधड़ चलने का भी अनुमान है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ की चक्का जाम संबंधी खबर पर अमर उजाला और दैनिक जागरण की लगभग एक जैसी सुर्खी है। नहीं माने निगम कर्मचारी, आज रात से बसों की हड़ताल, सरकार ने लगाया ऐस्मा, नई भर्ती होगी। जबकि हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, निजी बस ऑपरेटर हड़ताल में सरकार के साथ अतिरिक्त सेवाएं देने को तैयार। पंजाब केसरी की एक खबर है, सरकार को VBG रामजी योजना का प्रारूप मंजूर नहीं, केंद्र से की जाएगी पैरवी। मौसम पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मॉनसून के आने से पहले 6 डिग्री गिरा पारा, लाहौल की चोटियों पर बिछी बर्फ की चादर। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, बिलासपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को पद्मश्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ ने आज रात 12 बजे से चक्का जाम करने का किया ऐलान। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में ऐस्मा लागू। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए अस्थाई चालकों की भर्ती प्रक्रिया की शुरू। ₹1500 प्रतिदिन मानदेय निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने उठाए कई कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बावजूद जनादेश हथियाने का लगाया आरोप। और केंद्र सरकार ने कहा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
5: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

दिल से स्वागत आप सभी सुनने वालों का आपके अपने कार्यक्रम कुदरत के रंग में, जहां सुबह की पहली किरण, पेड़ों की हल्की सी सरसराहट और परिंदों की मीठी आवाज़ दिल को सुकून दे जाती है। जिंदगी की भागदौड़ में अगर कहीं थोड़ा सा ठहरना हो तो कुदरत हमेशा अपनी बाहों में जगह दे देती है, कभी बारिश की बूंदों में, कभी मिट्टी की खुशबू में। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हमसफ़र बबीता शर्मा, और आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग, जहां हर एहसास कुदरत के साथ और भी हसीन हो जाता है। आज के इस हसीन और खुशनुमा सफ़र में हम और आप चलेंगे साथ साथ। कौन सी जगह पर और कौन सी वो खूबसूरत जगह है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये बढ़िया सा गीत। जी बिल्कुल, मीठी सी हलचल, मीठा सा शोर आपके अपने रेडियो सेट्स पर।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां पर आप आनंद ले रहे हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की गोद में बसे एक ऐसे खूबसूरत गांव की सैर पर, जहां बादल घरों की छतों को छूते हैं, देवदार के जंगल अपनी खुशबू बिखेरते हैं और हर सुबह किसी जादुई कहानी की शुरुआत जैसी लगती है। जी बिल्कुल, आज का हमारा सफर है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित खूबसूरत शोजा गांव की ओर। शोजा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है। आपको बताएं, ये गांव जलोरी दर्रे यानी जलोरी पास के करीब स्थित है और अगर आप शिमला या कुल्लू से यात्रा करते हैं तो घुमावदार पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए आप शोजा पहुँचते हैं। और जैसे जैसे आप इस गांव के करीब आते हैं, वैसे वैसे प्रकृति का सौंदर्य और भी मनमोहक होता जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है जो शहरों की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं। प्रकृति की गोद में बसा है शोजा गांव। जी बिल्कुल, कल्पना कीजिए सुबह का समय है, आपके सामने देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, दूर पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं और बादलों की सफ़ेद चादर घाटियों में तैर रही है। यही है शोजा गांव का जादू। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मिलेगी आपको सुकून भरे दो पल और बहुत सारी प्राकृतिक शांति। ना कोई शोर, ना ट्रैफिक की आवाज़, बस हवा की सरसराहट और पक्षियों का मधुर संगीत। फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए ये जगह किसी सपने से कम नहीं है और हर मोड़ पर ऐसा दृश्य मिलता है जिसे कैमरे में कैद करने का मन करता है। फिलहाल आपका भी मन कर रहा होगा सफर में एक बढ़िया से गीत सुनने का, तो चलिए आपकी ख्वाहिश भी पूरी की देते हैं और आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, शोजा की यात्रा जलोरी पास के बिना अधूरी मानी जाती है। ये हिमाचल के सबसे खूबसूरत पर्वतीय दर्रों में से एक माना जाता है और जलोरी पास समुद्र तल से लगभग 3,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में यहाँ बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है, जबकि गर्मियों में चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे जंगली फूल भी यहाँ देखने को मिलते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए जलोरी पास ट्रैकिंग और प्रकृति दर्शन का एक बहुत ही शानदार केंद्र माना जाता है।

अब बात करते हैं शोजा के पास स्थित एक बेहद खूबसूरत और पौराणिक महत्व वाली जगह सरोसर झील की। जलोरी पास से लगभग 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद ये झील बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस झील की रक्षा एक नाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि झील का पानी इतना साफ और स्वच्छ है कि इसमें एक पत्ता भी लंबे समय तक नहीं टिक पाता। झील के चारों ओर फैले

देवदार के जंगल इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देते हैं। जो लोग ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और ट्रैकिंग का आनंद ज़रूर लीजिएगा। अब बात करते हैं शोजा गांव की स्थानीय संस्कृति और यहाँ के लोगों की। देखिए, किसी भी जगह की असली पहचान वहाँ के लोग होते हैं। शोजा के लोग बेहद सरल, मेहनती और मेहमान नवाज हैं। यहाँ की संस्कृति में पहाड़ी परंपराओं की झलक भी देखने को मिलती है। स्थानीय त्योहारों के दौरान रंग बिरंगे परिधान, लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत

को अपनी संस्कृति का हिस्सा समझते हैं। अब हम सैर कर रहे हैं आज शोजा गांव की, तो भाई शोजा गांव की सैर हो रही है। और या हम किसी भी जगह की सैर जब करते हैं, वहां के अगर खाने की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। शोजा में आपको हिमाचली व्यंजनों का असली स्वाद भी चखने को मिलता है। जब भी आप यहाँ आएँ तो आप सिड्डू, मदरा, राजमा चावल, हिमाचली धाम और देसी घी से बने पारंपरिक पकवान का आनंद भी ले सकते हैं। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय और स्थानीय भोजन का स्वाद आपकी यात्रा को यादगार बना देता है।

कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज हम सैर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत गांव शोजा की। देखिए, प्रकृति प्रेमियों के लिए शोजा एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। यहाँ कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। सुबह सुबह जंगलों में घूमते समय आपको रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। इसके अलावा आसपास के जंगलों में हिमालय वन्य जीवों का भी निवास है, इसलिए ये स्थान प्रकृति और वन्य जीवन के शोधकर्ताओं के लिए भी एक बहुत ही खास महत्व रखता है। तो देखिए, अगर आप शोजा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हर मौसम यहाँ हर एक अलग अनुभव लेकर आता है। मार्च से जून की हम बात करें तो यहाँ का बहुत ही सुहावना मौसम रहता है, या यूं कहें कि हरियाली वाला मौसम रहता है। बात करें जुलाई से सितंबर की तो बारिश के बाद यहाँ पर प्रकृति और भी खूबसूरत हो जाती है। अक्टूबर और नवम्बर में साफ आसमान और यहाँ पर आप शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं, और दिसंबर से फरवरी अगर आप यहाँ आते हैं तो बर्फबारी का जादुई अनुभव आपको मिल सकता है। यानी साल का हर मौसम शोजा को एक अलग अंदाज में सजाता है। जी हाँ डी लिसनर्स, आज हमने जाना हिमाचल प्रदेश के उस खूबसूरत गांव के बारे में जिसे लोग प्यार से हिडन पैराडाइज भी कहते हैं। तो शोजा एक सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि प्रकृति के साथ बिताया जाने वाला एक बहुत ही अलग सा अनुभव है। यहाँ की शांति, हरियाली, झीलें, जंगल और पहाड़ आपको जिंदगी की भागदौड़ से कुछ पल के लिए दूर ले जाते हैं। तो अगर आप कभी हिमाचल घूमने का प्लान करें तो शोजा को अपनी सूची में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो आप अगर हिमाचल आना चाहें

चाहते हैं और शोजा घूमना चाहते हैं तो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए और प्रकृति से प्यार यूं ही करते रहिए।

0: वेल डियर लिसनर्स, कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम शिमला पर लीजिए अब खुद को अपडेट कीजिए एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के लाखों श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने अधिकारियों को वीबीजी रामजी योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने के

0: निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनाव में हारने के बाद भी जनादेश हथियाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम आए एक महीने का समय हो चुका है, मगर सरकार अभी तक ब्लॉक समिति, जिला परिषद व अन्य स्थानीय निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन और राज्य सरकार के बीच कल हुई वार्ता विफल रहने के बाद यूनियन ने ये निर्णय लिया है। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा के बाद निगम ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए 656 अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने भर्ती विज्ञापन जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादलों के बीच मौसम साफ बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने कल 25 जून से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और अंधड़ चलने का भी अनुमान है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
2: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम शिमला पर अब हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका अपना गीत गाता चल कार्यक्रम लेकर।

कविता कृष्णमूर्ति और पंकज मनहर उदास की आवाज़ों में अभी आपने सुना सौदागर फिल्म का गीत। बाहर आने तक इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा बौडवाल और पंकज उदास की आवाज़ों में।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं गीत गाता चल कार्यक्रम का। कार्यक्रम
1: सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं गीत गाता चल कार्यक्रम का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने चुना है आप सभी लिसनर्स के लिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोटवाल की आवाज में गाए मरते दम तक फिल्म के इस गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना आपके साथ फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं गीत गाता चल कार्यक्रम का। शक्ति फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: बेवफा से वफा फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल के गाए जीना तेरी गली में फिल्म के इसी गीत के साथ गीत गाता चल कार्यक्रम में आज बस इतना ही।

0: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्ज और FM 103.7 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 11 बजने को है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्काजाम का ऐलान किया है। यूनियन और राज्य सरकार के बीच कल हुई वार्ता विफल रहने के बाद यूनियन ने यह निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही रवैये के कारण विवश होकर चक्काजाम करने का निर्णय लिया गया है।
3: मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के ये हमें ले रहे हैं। हमें 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
2: इस बीच राज्य सरकार ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी ESMA के प्रावधान लागू किए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC राज्य की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
4: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ESMA लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
2: हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक परिचालक संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा के बाद निगम ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए 656 अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने भर्ती विज्ञापन जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। चयनित चालकों को विभिन्न डिपुओं में आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर तैनात किया जाएगा। निगम ने चयनित चालकों के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन मानदेय निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के लाखों श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने अधिकारियों को VBG रामजी योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों के तहत फिलहाल हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी दर 247 रुपये और जनजातीय क्षेत्रों में 309 रुपये निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों, महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए ये मजदूरी दर पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मजदूरी दर में वृद्धि की मांग की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हारने के बाद भी जनादेश हथियाने का आरोप लगाया है। मंडी जिला के तत्तापानी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनावों के परिणाम आए 1 महीने का समय हो चुका है, मगर सरकार अभी तक ब्लॉक समिति, जिला परिषद व अन्य स्थानीय निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भाजपा समर्थित विजयी प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए विवश किया जा सके। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता संभालने के बाद 2500 से अधिक संस्थान बंद करने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनी

आज का आपका और हमारा ये संगीतमयी सुरमयी सफर बस यहीं तक। अब अपनी रेडियो हम सफर बबीता शर्मा को दीजिए इजाजत। इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यूं ही सुनते रहिए FM शिमला।

0: या वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
3: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
2: FM।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम 11:06 हुए हैं और एफएम शिमला पर अब समय हो गया है आपके अपने ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। कार्यक्रम में आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ सुमन और लेकर आए हैं आपको कुछ बेहतरीन से नगमे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज है 24 जून और आज के दिन होता है बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता राज बब्बर का जन्मदिन। तो आज के इस कार्यक्रम में उन पर ही फिल्माए हुए कुछ गीत हम आपको सुनाएंगे और सबसे पहले आपको सुना रहे हैं प्रेम गीत फिल्म का गीत सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने।

कार्यक्रम में आगे बढ़ती हैं और अब आपको सुना रहे हैं झूठी। इस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, माया गोविंद के बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत है।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास।

0: आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। चलिए कार्यक्रम के सफर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुना रहे हैं हम आज की आवाज। इस फिल्म से ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल हैं और रवि का संगीत है।

0: की।
1: वाह वाह प्रभात, वाह।
2: एफएम शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पुराने फिल्मों से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं राजबब्बर पर फिल्माए हुए कुछ फिल्मी नगमे, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: तो कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा, आपको गीत हम सुनाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: तो अब आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत जीने नहीं दूंगा। इस फिल्म से आनंद बख्शी की बूंद है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

तो आज के इस कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला। 11:30 हुए हैं और अब आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ी संगीत।

कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम कर रहे हैं कृष्णलाल साइकिल के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन, हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुना रहे हैं कृष्णा देवी की आवाज में।

लीलावंती की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। एफएम शिमला से कार्यक्रम चल रहा है पहाड़ी संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुना रहे हैं राजीव कुमार की आवाज़ में ये लोकगीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी सुन रहे हैं FM शिमला। 12 बजने को हैं और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी ये उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

तो फिल्म संगीत में आज फिलहाल इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान कभी भी पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। बहनों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन में। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी रमा ठाकुर
1: और मैं कौशल्या। आप सभी को हम दोनों का नमस्कार।
0: कौशल्या, आज है बुधवार और आज हम लेकर आते हैं अपनी बहनों के लिए स्वास्थ्य चर्चा, और इसके साथ ही साथ बहनों आपके लिए और भी बहुत सी जानकारियां हम लेकर आए हैं, और साथ ही आपके मनोरंजन का भी हम पूरा ख्याल रखते हैं। तो आप यूं ही बनी रहिए और सुनती रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन।
1: जी हाँ, देखिए रमा, आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि देखिए सबसे अहम बात जो होती है वो है खुद पर हम विश्वास कैसे करें, है ना रमा। बहनों, आज हम यही जो विषय हम कह रहे हैं कि अगर हम अपने ऊपर हमारा विश्वास है, एक विश्वास बहनों एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर हमारा पूरा भरोसा निर्भर करता है। विश्वास है तो सब कुछ है, वरना रमा कुछ भी नहीं है।
0: जी, हमें खुद पर विश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी जो नकारात्मक सोच है उससे बचना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना है, और फिर हमारे मन में विचार आता है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे इस डर से हम लोग कई बार उस काम से अपने जो कदम है वो पीछे हटा लेते हैं।
1: जी,
0: तो ये होती है नकारात्मक सोच। और बहनों, सकारात्मक सोच के साथ अगर हम कार्य करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और छोटी छोटी भी अगर हम कोई जीत हासिल करते हैं अपने जीवन में,
1: जी
0: तो उसकी खुशी ज़रूर मनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, और एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है।
1: बिल्कुल, देखिए रमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहनों, खुद को समय देना होगा इसके लिए रमा, और अपने अंदर की खूबियों को पहचानना होगा, और अपनी गलतियों से सीखने का अपने आप को ही अवसर देना होगा।
0: जी,
1: तभी हम खुद के विश्वास को, देखिए ना बहनों, कायम रख सकते हैं।
0: जी, आत्मविश्वास यानी कि खुद पर विश्वास को मजबूत और निरंतर बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का जो होता है ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना बहनों, कि नकारात्मक सोच को हमें चुनौती देनी होगी। अब जैसे हमने पहले भी कहा
1: जी,
0: कि अगर हम नकारात्मक ही सोचते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और अपनी कमजोरियों को भी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है।
1: जी,
0: हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो कमियाँ क्या है, हमारी कमजोरियाँ क्या है।
1: बिल्कुल,
0: जब हमें इसका ज्ञान होता है ना बहनों, तो हम उस पर काम कर सकते हैं, और उन्हें अपनी जो हमारी कमजोरियां हैं उन्हें अपनी हम वही चीज़ होती है कि हम उन्हें अच्छे से सुधार सकते हैं, और जब हम उसमें सुधार होता है तो वही हमारी मजबूती बन जाती है।
1: बिल्कुल, और देखिए ना।

0: बहनों, अगर कई बातें जो होती हैं, दैनिक बातें जो होती हैं जिंदगी में होने वाली, वो आपके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं कम भी करती है और ज़्यादा भी करती है। कैसे? जैसे कई बार हम कहते हैं, जैसा अभी रमा आपने कहा, ये काम हम नहीं कर सकते, है ना। हमने पहले ही मना कर दिया तो क्या होगा कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी काम को जो है अंजाम तक ना पहुंचा पाए, है ना। और
1: बिल्कुल
0: सिर्फ कहते हैं ना कि हमारे अंदर का डर जो है वो एक वजह होती है जिस वजह से हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते। तो बहनों, हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम ये काम नहीं कर सकते या ये काम नहीं कर सकते। अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगी।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना कौशल्या कि हमारा हमसे बेहतर जो मित्र है वो कोई नहीं होता है।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसी स्थिति में बहनों, अगर आप कभी परेशान हैं तो खुद से बात करें, जैसे आप अपनी किसी दोस्त से भी बात कर सकती हैं। और
0: जी,
1: अगर आपको नकारात्मक सोच कहीं आ रही है तो कोशिश करें आप अपने मन में ये बात करें कि मुझे इससे डरना नहीं है और मुझे इस सोच को बदलना है, तभी आप खुद के विश्वास को कायम रख सकती हैं।
0: बिल्कुल रमा। देखिए ना, छोटी छोटी जीतों का हमें जो है जश्न भी मनाना चाहिए रमा। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब आप छोटे कार्यों को पूरा करते हैं तो इससे आपका मनोबल बढ़ता है। और अपने दिन भर के कुछ ज़रूरी कार्यों को पूरा करने के लिए बहनों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि एक छोटी सी डायरी बनाएं, उसमें अपनी सफलता, अच्छे कार्यों की तारीखें ज़रूर लिखें,
1: जी
0: जिसे देखकर आप अच्छा महसूस करें, वो खुशी के पलों को ज़रूर याद करें, जिससे आपका मन खुश हो और आपका आत्मविश्वास जो है वो भी बना रहेगा।
1: बिल्कुल। और बहनों एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है ना वो अलग होता है, सबकी क्षमताएं भी अलग अलग होती है। दूसरों के जीवन की चमक देखकर खुद को कम आंकने के बजाय अपने पिछले कल से आज की तुलना करें, क्योंकि बहनों क्या होता है ना कि कई बार हम देखा देखी तो करते हैं लेकिन जो हमारी क्षमता है
0: उसको भूल जाते हैं, है ना।
1: जी, और उस पर अगर हम लोग नहीं विचार कर रहे हैं और हम देखा देखी कर रहे हैं तो उससे हमारा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने आप में बेहतर हैं और अपनी जो भी कार्य हैं आपके उसकी तुलना आप अपने पिछले कार्यों से ज़रूर करें।
0: बिल्कुल। और देखिए बहनों, अपनी शारीरिक सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपका दिमाग और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए नियमित तौर पर व्यायाम करें। अच्छी नींद और पौष्टिक भोजन आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं और मानसिक जो है स्पष्टता को बेहतर बनाते हैं, जिससे आप खुद पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। देखिए बहनों, हम तो यही कहेंगे, अगर आप खुद स्वस्थ हैं तो आपकी जो आत्मविश्वास है, भरोसा आप पर खुद बना ही रहेगा।
1: जी, और बहनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, रोज़ सुबह की सैर करें, थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ता है ज़िंदगी में, चुनौतियों का सामना करें और
0: बिल्कुल
1: घबराएं बिल्कुल नहीं, इससे ही व्यक्ति सीखता है। और बहनों गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलतियां सभी से होती है, और असफलता को अंत ना मानते हुए निरंतर प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें,
0: बिल्कुल
1: खुद पर भरोसा रखें। और आत्मविश्वास ऐसे ही धीरे धीरे आता है, जब आत्मविश्वास होगा तभी तो आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं।
0: बिल्कुल रमा। और देखिए ना, अब
1: समय है
0: हाँ समय है गाने सुनने का, खुद भी सुनते हैं और हमारी बहनें भी सुनती हैं।
1: जी।

0: मैनू, आइए बात करते हैं कुछ योगा के बारे में, है ना। महिलाओं के लिए योग और स्वास्थ्य के बारे में आज हम मैनू चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए योग, देखिए मैनू, उनके संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल स्वास्थ्य को संतुलित करने का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी तरीका माना जाता है।
1: जी बहनों, ये मासिक धर्म की समस्याओं, गर्भावस्था और मेनोपॉज के दौरान विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। तो बात करते हैं कुछ प्रमुख योगासन और उनके लाभ के बारे में।
0: जी, तो देखिए ना बहनों, हार्मोनल संतुलन जो है, और थायराइड के लिए हम अगर बात करते हैं तो उसके लिए बहनों भुजंगासन जो होता है, ये संपूर्ण गर्भाशय के कार्यों को उत्तेजित करता है बहनों, और हार्मोनल अनियमितता जो होती है उनमें राहत भी देता है।
1: जी, और जब बात करें सर्वांगासन और मत्स्यासन की, तो ये थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही मासिक धर्म और पेट दर्द में राहत के लिए जो है धनुरासन किया जाता है, जो पाचन प्रणाली को मजबूत करता है।
0: बहनों, अब बात करते हैं बालासन की। इसमें इसको करने से पीठ के निचले हिस्से का जो बहनों दर्द होता है वो काफ़ी कम इससे होता है, और मानसिक तनाव जो है उससे भी राहत दिलाता है ये आसन। और अगर हम बहनों बात करें हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो उसमें बहनों है एक वृक्षासन है और एक त्रिकोणासन है।
1: जी, और ये जो आसन है ये शरीर का संतुलन सुधारते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस, और जिससे कि हड्डियों के

0: कमज़ोर होने की, हम सभी जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों को कमज़ोर करता है, जो
1: बिल्कुल
0: इसकी समस्या है उससे बचाव के लिए पैरों और रीढ़ की हड्डी को ये मजबूत करता है। तो जो ये वृक्षासन और त्रिकोणासन है इसे ज़रूर करें बहनों।
1: बिल्कुल। और देखो बहनों, मानसिक अगर शांति की बात आती है, देखिए कई बार बहनों को नींद भी अच्छी नहीं आती है ना, तो बहनों इसके लिए आप ज़रूर प्राणायाम रोज़ करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और चिंता जो है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करती है। साथ में नींद जो है, नींद अच्छी नींद आने के लिए भी ये आसन जो है हमें मदद करते हैं।
0: बिल्कुल। और आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना, उसमें समय की काफ़ी कमी सी हो गई है।
1: बिल्कुल
0: किसी के पास भी वक्त नहीं है, पर हमें अपने शरीर के लिए तो बहनों थोड़ा वक्त देना ही होगा।
1: बिल्कुल
0: अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहती हैं, फिट रखना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समय ज़रूर देना चाहिए।
1: बिल्कुल। ये सभी आसन जो आसानी से हो सके इन्हें करके हम अपने शरीर को, देखिए रमा, स्वस्थ रख सकते हैं। बस
0: जी
1: हमें इन्हें रोज और नियमित रूप से करते रहना होगा।
0: बिल्कुल। अगर हम नियमित रूप से बहनों योग करते हैं तो उसके प्रभाव आप बहुत ही जल्दी देख पाती हैं। और कुछ बातें अब बहनों ज़रूर आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि नियमित जो व्यायाम की हम बात करें, 15 से 20 मिनट अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि योग से हम जो है स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो इसे अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं।
1: बिल्कुल। और देखिए बहनों, जब सावधानी की बात आती है तो हमें मासिक धर्म के शुरुआती दिनों में या गर्भावस्था के दौरान कठिन योगासन करने से बहनों बचना चाहिए। ऐसे में केवल विशेषज्ञों की निगरानी में हल्के प्राणायाम और ध्यान का भी अभ्यास ही करना चाहिए।
0: जी, तो इसलिए बहनों योग हमारे जीवन में शारीरिक लचीलापन, मानसिक शांति, निरोगी काया पाने में मदद करता है। और साथ ही जो ये सबसे उत्तम कला भी मानी जाती है योग की और ध्यान की, तो
1: बिल्कुल
0: इसे ज़रूर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
1: बिल्कुल। देखिए ना बहनों, योग जो है केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक प्राचीन माध्यम है। हमें अपने लिए तो समय निकालना ही चाहिए बहनों। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप हर कार्य कर सकते हैं। इसलिए योग करें और स्वस्थ रहें।
0: जी,
1: और
0: इसके साथ ही बहनों एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा योग क्रिया आप ना करें जिससे कि आपको तकलीफ हो रही है। और
1: बिल्कुल
0: किसी जानकार जो है जो योग क्रियाएं अच्छे से करवाते हैं उनका परामर्श ज़रूर लें।
1: बिल्कुल।

0: बहनों, आइए स्वास्थ्य और चर्चा के अंतर्गत हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य में हमें कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम अपना बचाव कर सकें। बहनों देखिए ना, जब मौसम बदलता है तो अक्सर क्या होता है, घर के किसी न किसी सदस्य को सर्दी, खांसी, गले में खराश या हल्का बुखार हो जाता है। ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे समय में समझदारी से काम लेना ज़रूरी होता है। यदि लक्षण हल्के हैं तो घर पर कुछ साधारण उपाय अपनाकर काफ़ी हद तक राहत पाई जा सकती है।
1: जी, सबसे पहले बात करते हैं बहनों आराम की। हमारी कितनी ही बहनें बीमारी में भी अपने काम काज जो है वो जारी रखती हैं
0: जी,
1: लेकिन बहनों याद रखिए, शरीर जब बीमार होता है तो वो हमें आराम करने का संकेत दे रहा होता है।
0: बिल्कुल,
1: पर्याप्त विश्राम शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति देता है और जल्दी स्वस्थ होने में मदद करता है। इसके साथ ही पानी का सेवन बढ़ाना भी बेहद आवश्यक होता है।
0: बिल्कुल। और देखिए ना, गुनगुना पानी ना केवल गले को आराम पहुंचाता है रमा, बल्कि शरीर में पानी की कमी जो है उससे भी हमारे शरीर को बचाता है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिए, सूप हो गया, नींबू पानी या नारियल पानी लेते रहना लाभदायक हो सकता है। गले में खराश हो तो हमारी दादी नानी का एक पुराना और कारगर नुस्खा भी हमारी बहनें अपना सकती हैं।
1: बिल्कुल, और वो जो प्रासंगिक नुस्खा है ना,
0: बिल्कुल
1: गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे, दिन में 3 से 4 बार गरारे करने।

0: से गले की सूजन कम हो सकती है और काफ़ी राहत महसूस होती है। इसी तरह तुलसी, अदरक और काली मिर्च से तैयार हल्का काढ़ा भी जो है वो गले की को आराम देने में सहायक माना जाता है।
1: जी
0: इसकी सुगंध और गर्माहट जो है वो शरीर को सुकून देती है। अगर नाक बंद हो रही है या सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा है तो भाप लेना बहुत लाभदायक हो सकता है।
1: बिल्कुल। और देखिए ना जी, भाप जो है ना, अगर आप लेती हैं तो वो श्वसन मार्ग को खुला रखने में और जकड़न को कम करने में मदद करती है ना। बीमारी के दौरान खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए बहनों। इस समय तली भुनी और भारी चीज़ों से बचना चाहिए, हल्का है ना खाना खाना चाहिए, गर्म ताज़ा सुपाच्य भोजन लेना बहनों लाभदायक होता है। जैसे कि खिचड़ी हो गई है ना रमा, दलिया हो गया, दाल का सूप है, सब्जियों का सूप, ताज़े फल शरीर को ज़रूरी ऊर्जा देते हैं।
0: जी, और साथ ही पोषण भी प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो बहनों, खांसी, आंवला, संतरा, मौसमी, अमरूद और नींबू जैसे विटामिन सी युक्त फलों को अपने आहार का हिस्सा जरूर बनाएं।
1: जी हाँ, अब बात करते हैं बहनों, देखिए बदलते मौसम में कुछ छोटी छोटी लापरवाहियाँ हमें बीमार कर सकती है ना।
0: जी
1: जैसे बहुत ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना, गर्मी लग रही है हम आते हैं फटाफट से ठंडा कोई भी चीज़ पी लेते हैं ना, बारिश में भीगने के बाद कपड़े ना बदलना, गीले
0: जी
1: जूते मोजे बहुत समय तक पहने रखना और पर्याप्त नींद ना लेना, बाहर का खाना खाना, हाथों की सफाई पर ध्यान ही ना देना, ये आदतें जो हैं बहनों संक्रमण का खतरा को जो है वो बढ़ा ही देती हैं।
0: बिल्कुल। मैंने कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा बदलाव करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले तो हाथ धोने की आदत डालनी होगी।
1: बिल्कुल
0: साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत डालें। खाने से पहले, शौच के बाद और बाहर से घर लौटने पर हाथ अवश्य साबुन से धोएं। मौसम बदलने पर भी शरीर को पानी की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल। और दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से है ना, यानी 8 या 10 गिलास पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर में मौजूद विषैले तत्व जो है बहनों वो बाहर निकलते हैं और संक्रमण से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
0: जी
1: तो बहनों इसके साथ ही अपनी जो थाली में हम अक्सर कहते हैं बहनों को मौसमी फल हमेशा लें, हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज, दूध और दही ज़रूर शामिल करें, विटामिन सी युक्त पदार्थ खाद्य पदार्थ जो है वो भी ले सकती हैं। हम आपको पहले जो ये सारी बातें बता चुके हैं ना बहनों को, हम अक्सर ही देखो रमा कहते ही हैं ना, पर्याप्त जो आपकी थाली है वो पौष्टिक होनी चाहिए, है
0: बिल्कुल। और
1: ना
0: जो जैसे अभी हमने बताया भी कि विटामिन सी युक्त जो भी हमारे
1: जी।
0: खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लेना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके
1: बिल्कुल
0: साथ ही बहनों, पर्याप्त नींद लेना भी
1: ये
0: अच्छे
1: बेहद
0: स्वास्थ्य के
1: ज़रूरी
0: लिए।
1: है रमा, है ना, नींद, क्योंकि आजकल आप जानती हैं क्या हो रहा है, मोबाइल में चिपके रहते हैं, चाहे बड़े हैं घर के, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, हम अक्सर मोबाइल में इतना समय लगाते हैं यही पता नहीं चलता कि कब समय हो गया, और हमारी इसी वजह से बहनों हमारी नींद बहुत ज़्यादा जो है वो नींद का संतुलन बिगड़ता जा रहा है ना,
0: जी
1: हम नींद
0: और
1: नहीं ले पा रहे हैं। हाँ
0: जी विशेषज्ञों के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन बहनों 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और
1: बिल्कुल
0: अच्छी नींद जो होती है ना, शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है।
1: जी बिल्कुल
0: इसके साथ ही बारिश में भीगने से बचें। और अगर किसी कारणवश आप भीग जाते हैं तो कोशिश करें कि तुरंत सूखे कपड़े पहन लें।
1: बिल्कुल। और देखो अत्यधिक ठंडा पानी जैसा हम कहते हैं, आइसक्रीम और बाहर की कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करें, है ना, विशेष तौर पर जब गले में हल्की खराश महसूस हो रही है तो बहनों इन चीज़ों का सेवन करने से आप ज़रूर बचें।
0: जी, योग और प्राणायाम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसे अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और अगर 2 दिन से ज़्यादा बुखार या संक्रमण हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसमें ज़रा भी लापरवाही ना करें।
1: बिल्कुल।

0: मैंने वो चलते चलते बात करते हैं कि व्यस्त जीवन शैली के कारण हम लोग रोज़ाना खासकर खाने के बाद कई बार क्या करते हैं कि तुरंत ही कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से बिगाड़ देती हैं। तो ये स्वास्थ्य टिप्स हम आपसे अभी चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में चलते चलते में।
1: और देखिए ना रमा, इन्हीं आदतों की वजह से हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियां हो जाती हैं। इसलिए खाने के फौरन बाद कुछ काम बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए,
0: जी
1: है ना। कुछ छोटे छोटे काम हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए।
0: जी इसके साथ ही बहनों, कई लोग भोजन के बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन कर लेते हैं। विशेषज्ञों की माने तो भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी पीने से हमारा जो पाचन है वो ख़राब होता है, और भूख ना लगना या कभी कोई भी समस्या हो सकती है। तो इसलिए तुरंत खाने के बाद चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, क्योंकि इसका सेवन करने से जो खाना है हमारा वो सही तरह से पचता नहीं है।
1: बिल्कुल। और देखिए, बात आती है रमा फलों के सेवन की, तो देखिए सेहत के लिए फल तो लाभदायक होते हैं, लेकिन गलत समय पर अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। फलों का समय जो है वो आपके लंच डिनर के समय नहीं होता है ना, वो आपको अगर सुबह खाली पेट आप भोजन के पहले अगर आप खाती हैं तो लाभदायक होते हैं।
0: और बहनों, ठंडा पानी, ठंडे पानी की अगर हम बात करें तो ये भी सभी को पसंद होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में खाना एक जगह जमा हो जाता है और पाचन में दिक्कत पैदा करता है। भोजन के कम आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद अगर आप पानी पीती हैं तो वो आपके शरीर को लगता है।

0: है और आपका खाना भी सही तरह से पच चुका होता है।
1: बिल्कुल। देखिए बहनों, भोजन करने के बाद तुरंत आप ना सोएं, है ना, ये पाचन क्रिया को ये भी प्रभावित करता है। कुछ समय के लिए आप थोड़ा टहलें इधर उधर, आधे घंटे के लिए कम से कम टहलें, है ना। नहीं तो बहनों क्या होता है, खर्राटे की वजह अक्सर ये हो जाती है खाने के, है ना, खाने के बाद अगर आप एकदम से सोती हैं तो। और ये छोटी छोटी बातें हैं देखिए रमा, और बहुत काम की बातें हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो बरकरार रख सकते हैं।
0: बिल्कुल बहनों, हम आपसे यही कहेंगे कि जो खाने की आदत है उसमें थोड़ा सा सुधार करें। अगर आपको पानी पीना है तो खाने से 1 घंटा पहले पानी पिएं, और खाने के 1 घंटे बाद अगर आप पानी पीती हैं या चाय कॉफ़ी का सेवन करती हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं।
1: बिल्कुल
0: तो अब कार्यक्रम का अंतिम गीत बहनों को सुनवा देते हैं।
1: जी।

महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। एक बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है।

0: alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra in the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Odisha, Telangana and West Bengal and Sikkim till the 29th of this month. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab. In the FIFA World Cup 2026, Colombia have qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in the group game match. And that is the end of this news bulletin.
1: वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुन रहे हैं एफएम शिमला। 1:10 हुए हैं और अब समय हुआ है कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती का। और कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपके साथ सुमन और इस कार्यक्रम में सुनाएंगे आपको कुछ बेहतरीन सी नगमे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दीवाने फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है जसविंदर नरूला ने।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको सुना रहे हैं सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में यादें फिल्म से ये गीत।

0: ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज

0: आईजीएमसी शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखु सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखु सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको हिम्मतवार फिल्म से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

अभिजीत और अलका यांग्नी की आवाज़ों में सुना रहे हैं आपको जुदाई फिल्म का ये गीत।

दोपहर के 2 बज चुके हैं और FM शिमला पर अब समय हो गया है कार्यक्रम सब रंग का, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं कुछ गैर फिल्मी नगमे। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं KK और शंकर महादेवन की आवाजों में यारू फिल्म से गीत।

हम भी हैं साथ साथ, दूरियां अब नहीं दोनों के दरमियान।

तो आज के इस कार्यक्रम सबरंग में फिलहाल इतना ही। अब आप सुमन को दीजिएगा इजाजत और यूं ही सुनते रहिए FM शिमला। और अब आपको लिए चलते हैं हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया रेले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन

0: इनमें बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमेरिका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी

0: दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी सुन रहे हैं FM शिमला। 2:30 हुए हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं हिमाचली लोकगीत। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं गुलशन पाल के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

सुनपति और लक्ष्मी की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये लोकगीत। FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम शिखरों के स्वर। और अब आगे बढ़ते हुए अगला लोकगीत हम आपको सुना रहे हैं मंजू भारद्वाज और सीमा भारद्वाज की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना मुनीश कुमार की आवाज में लोकगीत। तो आज के इस कार्यक्रम शिखरों के स्वर में फिलहाल इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों से एक बार फिर अपनी प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में प्रतिदिन हजारों लोग परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हैं और यहाँ आने जाने के लिए बसों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसे में चक्का जाम करना किसी भी सूरत में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चालकों परिचालकों की सभी जायज़ मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार

0: कार्य कर रही है और पिछले 3.5 वर्षों के दौरान कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया है। अग्निहोत्री ने चालकों व परिचालकों से अपनी मांगे मनवाने के लिए चक्का जाम की बजाय कोई दूसरा रास्ता अपनाने को कहा है।
1: जब 5 लाख लोग ट्रेवल करते हैं, ये यूनियंस को भी मालूम है कि लोगों को हिमाचल प्रदेश में ना तो रेल का रास्ता है, हिमाचल प्रदेश में ना तो एयर का रास्ता है, बसेस का ही रास्ता सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है। तो इसलिए कोई भी फैसला लेते समय जो है विवेक से बात होनी चाहिए। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तो हम डिफॉल्टर होते पे में पर मंथ, तब तो आप ऐसा बड़ा कदम उठाने के बारे में बोलते कि आपको पिछले 41 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। जब आपको तनख्वाह मिल रही है और हर महीने की मिली है, इसका मतलब ये है कि आप किसी न किसी बहाने जो है चक्का जाम करना चाहते हैं।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इसका आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में किया गया और ये प्रतियोगिता कल देर शाम सम्पन्न हुई। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा श्रीलंका, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा खेलों की ओर आकर्षित होते हैं और नशा मुक्त समाज के लिए ये एक बेहतर प्रयास है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहीं। सांसद सुरेश कश्यप ने आज कालाअंब पांवटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मारकंडा नदी के ऊपर बने 180 मीटर लंबे खजूरना पुल का उद्घाटन किया। इस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज व्यस्तता के कारण इस पुल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण नहीं कर सके। इस मौके पर सुरेश कश्यप ने कहा कि इस पुल के बनने से हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए भरपूर धनराशि दे रही है और इस समय प्रदेश में 22,190 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं निर्माणाधीन है।
2: बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे जिला सिरमौर और विशेष रूप से देहरादून को जाने जाने वाले हमारे यात्री हैं या पर्यटक हैं, उनको होने वाला है। ये पुल जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और लगभग 3.5 वर्षों में इसको पूरा किया, 2022 में इसका काम प्रारंभ हुआ था। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 22,190 करोड़ निवेश के लगभग 35 प्रोजेक्ट जो कि 545 किलोमीटर के लगभग हैं, इसका जो है काम चल रहा है।
0: देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। ये युवा नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी है। नीति आयोग ने बताया कि इस वर्ष के चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अंतिम मूल्यांकन के बाद 6 स्टार्टअप्स को उनके स्केलेबल और उच्च प्रभाव वाले समाधानों के लिए चुना गया। विजेता स्टार्टअप्स को 3,50,000 रुपये का सीड ग्रांट मिला, जबकि उपविजेता को 2,20,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, भारत के असाधारण बच्चों को सम्मान। वाचक स्वर है राकेश शर्मा के।
0: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जो 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के असाधारण धैर्य, साहस, सृजनात्मकता और अदम्य जज्बे वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 6 श्रेणियों बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह का आयोजन वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के अवसर पर किया जाता है।

0: जो गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के ऐतिहासिक बलिदान और उनके अदम्य साहस को समर्पित है। इस प्रकार भारत सरकार समकालीन युवा प्रतिभाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों को दृढ़ संकल्प और मूल्यों की कालजयी विरासत से जोड़ती है। भारत वीरों की भूमि है, जिसकी पहचान पीढ़ियों से इसके युवाओं के साहस, बौद्धिक प्रतिभा और त्याग की गौरवशाली परंपरा से निर्मित हुई है। युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस से लेकर बाल्यावस्था में ही वेदों के प्रकांड विद्वान बने आदि शंकराचार्य तक कम आयु में ही असाधारण संकल्प, प्रतिभा और समर्पण का भाव भारत के इतिहास में गहराई से रचा बसा है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बच्चों को मान्यता देना और उनका सम्मान करना है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को मान्यता देकर युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करता है और अन्य बच्चों को भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। पदक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र से युक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत के युवा परिवर्तनकर्ताओं के धैर्य, साहस, सृजनात्मकता और अदम्य जज्बे को समर्पित एक सम्मान है। वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से अब तक 203 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस पहल के माध्यम से सरकार बच्चों को केवल शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत आचरण सहित जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। असाधारण वीरता और उत्कृष्टता के लिए बच्चों को 6 क्षेत्रों में लगभग 25 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अपने जीवन को जोखिम में डालकर निस्वार्थ सेवा या साहस का परिचय देने वाले बच्चों को बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया है जिनके साहस, सृजनात्मकता और करुणा ने उनकी कम आयु से कहीं बढ़कर परिपक्वता का परिचय दिया है। हाल के पुरस्कार विजेताओं में शामिल अनेक बच्चों ने अपने अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का परिचय दिया है। इस पुरस्कार के नामांकन के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें बालक भारतीय नागरिक और भारत का निवासी हो, उसकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच हो, वो किसी भी श्रेणी में इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता नहीं होने चाहिए। घटना, उपलब्धि या कार्य नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से पिछले 2 वर्षों के भीतर हुआ होना चाहिए। ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है। किसी बच्चे को 1 से अधिक श्रेणियों के लिए नामित किया जा सकता है, लेकिन समिति के पास केवल 1 आवेदन स्वीकार करने का विवेकाधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बच्चे का नामांकन किया जा सकता है। बच्चे स्वनामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ सरकारी निकायों और कार्यालयों से भी सिफारिशें आमंत्रित की जाती हैं। आवेदकों को अपने व्यक्तिगत विवरण और पुरस्कार श्रेणी भरनी होती है और हाल ही के एक तस्वीर और सहायक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। उन्हें अपनी उपलब्धि और उसके परिणाम का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करना होता है, जो अधिकतम 1000 शब्दों में होना चाहिए। सभी नामांकन प्रविष्टियां निर्धारित समय सीमा तक सरकारी वेबसाइट https://awards-gov-in पर जमा कर दी जानी चाहिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री पुरस्कार समिति का गठन करते हैं और पुरस्कारों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति में पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित क्षेत्र या विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति प्राप्त नामांकनों की समीक्षा करती है और पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पुरस्कार विजेताओं और उनके अधिकतम 2 अभिभावक अथवा संरक्षकों के लिए आने जाने की इकोनॉमी श्रेणी की यात्रा, स्थानीय परिवहन, आवास और भोजन की व्यवस्था में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। पुरस्कार व्यक्ति रूप से प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि पुरस्कार विजेता समारोह में उपस्थित नहीं हो सकता अथवा मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए जाने की स्थिति में उसके स्थान पर 1 अभिभावक या संरक्षक पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सामूहिक चर्चा। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 MHz पर आप सभी सुन रहे हैं FM शिमला। 3:10 हुए हैं और अब समय हो गया है फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ सुमन, और आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में कुछ पुराने हिंदी नगमे।

मगर लगता है कुछ ऐसा। मिल गया

तो आज के इस कार्यक्रम फिल्म संगीत ओल्ड हिट में इतना ही। आप सुनते रहिए FM शिमला। 3:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए युवा साथियों का अपना खास कार्यक्रम युववाणी।

0: वाणी लेकर हाजिर है आपका साथी साहिल पठानिया। माँ के लिए कविताएं लिखी जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके हिस्से में अक्सर खामोशी आती है, जिसके त्याग का कोई हिसाब नहीं रखा जाता, जिसकी थकान पर बहुत ही कम बातें होती हैं, जो अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि जिम्मेदारियों में बयां करता है, जो बच्चों की मुस्कान के लिए अपनी तमाम इच्छाएं कुर्बान कर देता है, वह है पिता। जी हाँ, हमारा आज का विषय है पिता। ये विषय केवल वार्तालाप का नहीं बल्कि ये विषय है जज्बातों का, ये विषय है भावनाओं का। जब भी माता पिता की बात होती है तो माँ का जिक्र सबसे पहले आता है और आना भी चाहिए, लेकिन आज बात उस पिता की जो घर की नींव है, जो बाहर की दुनिया से लड़कर घर में सुकून लाता है, जिसकी हर खामोशी में हमारे लिए हजारों दुआएं छिपी होती हैं। पिता एक ऐसा रिश्ता होता है जो अपने बच्चों के लिए पूरी उम्र संघर्ष करता है, वह अपनी इच्छाओं को अलग कोने में रखकर हमारे सपनों को आगे बढ़ाता है। हम अक्सर माँ से तो अपनी भावनाएं साझा कर लेते हैं, लेकिन पिता के साथ संवाद हमारा कम हो जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि पिता अपना प्यार शब्दों से नहीं कर्मों से बयां करते हैं। और कहते हैं ना युवा साथियों, माँ घर की रोशनी है तो पिता उस घर की रोशनी को जलाए रखने वाला दीपक है। माँ अगर सपने दिखाती है तो पिता उन सपनों को पूरा करने की राह बनाते हैं। तो आइए युवा साथियों, इसी पर आधारित सुनते हैं एक गीत।
1: क्यों नहीं हो आप दूसरे पापा जैसे? क्यों नहीं हो?
2: मैं दूसरे पापा से अच्छा पापा हूँ। मैं बहुत काम करता हूँ। बाकी पापा संडे को आराम करते हैं, मैं संडे को भी काम करता हूँ, इसीलिए मैं अच्छा पापा हूँ। ऐसा ऋतु दीदी कहती है।

जी हाँ, युवा साथियों, कार्यक्रम है युवाणी और बात हो रही है पिता पर। माँ ममता का सागर होती है, लेकिन उस सागर तक पहुँचाने वाला व्यक्ति पिता होता है। माँ की ममता दिखाई देती है तो पिता का प्रेम अक्सर जिम्मेदारियों

में छिपा रह जाता है। बचपन में जब हम गिरते हैं तो माँ हमें दौड़कर उठाती है, लेकिन पिता हमें स्वयं उठना सिखाते हैं। जिसने खुद धूप में चलकर मेरे लिए छांव बनाई है, जिसने खुद धूप में चलकर मेरे लिए छांव बनाई है, मेरी हर छोटी खुशी के लिए उसने अपनी बड़ी खुशी भुलाई है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने पिता के साथ बैठकर दो बातें करने का समय भी नहीं निकाल पाते हैं। युवा साथियों, कभी फुर्सत के लम्हे हों तो उनसे बात करिए, उनके संघर्षों की कहानी सुनिए। आप पाएंगे कि आपकी सफलता के पीछे उनकी ना जाने कितनी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और ना जाने कितनी ही कुर्बानियां छिपी हैं। आइए सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, आज का विषय केवल और केवल सुनने का नहीं, विषय है भावनाओं का, विषय है एहसासों का। युवा साथियों, एक उम्र के बाद पिता बूढ़े नहीं होते, बल्कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारी चिंता करने लगते हैं। वो पूछते कम हैं, लेकिन हमारी परेशानी समझ लेते हैं। एक पिता अपने बच्चों से बहुत कम कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, बच्चों की फीस भरना, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना, यही उनका प्यार जताने का तरीका होता है। बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो पीछे से सीट पकड़ने वाला हाथ पिता का होता है, और जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो पीछे से हौसला देने वाली आवाज़ भी पिता की ही होती है। युवा साथियों, बड़े ही खूबसूरत शब्दों में कहा है कि मेरी पहचान का कारण है वो, मेरी पहचान का कारण है वो, मेरी हर उड़ान का आसमान है वो, जिसे लोग पिता कहते हैं, मेरे लिए तो मेरा पूरा जहान है वो, मेरा पूरा जहान है वो। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ, युवा साथियों, बचपन में जब हम गिरते थे तो हमें लगता था कि हमारे माता पिता ने हमें हाथ पकड़कर उठाया है, लेकिन बड़े होने पर समझ आया कि उन्होंने हमें सिर्फ उठाया ही नहीं, बल्कि हर बार सहारा देकर हमें संभाला था। दोस्तों, पिता उस मोमबत्ती की तरह होते हैं जो खुद पिघलती है ताकि घर में उजाला बना रहे। कभी उनके चेहरे को गौर से देखना, जो सफेद बाल दिखाई देते हैं वो उम्र नहीं बल्कि उनकी फिक्रों के हिसाब होते हैं। जो माथे की लकीरें दिखती हैं वो वक्त की मार नहीं, हमारे भविष्य की चिंता होती है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो आपके सफल होने पर आपसे ज्यादा खुश हो और आपके दुखी होने पर आपसे ज्यादा टूट जाए। वो इंसान है पिता। इसीलिए कहते हैं, ना मांगता है सम्मान ना अपने त्याग का हिसाब, ना मांगता है सम्मान ना अपने त्याग का हिसाब, बस बच्चों की खुशी में ढूंढ लेता है अपना ख्वाब। जिसे हम पिता कहते हैं वो दरअसल घर की होती है एक मजबूत किताब, मजबूत किताब। आइए सुनते हैं एक और गीत।

ना ऐरों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाज़ा है, ये मेरी माँ के पैरों से खुलता है। लाख बुराई निकाले मुझ में कोई शख्स, लाख बुराई निकाले मुझ में कोई शख्स, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला मुझे मेरे पिता से मिलता है। आगे बढ़ने का हौसला मुझे मेरे पिता से मिलता है। युवा साथियों, पिता की कुर्बानियाँ अक्सर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वे उन्हें कभी नहीं गिनाते हैं। वे अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चों के सपनों के लिए छोड़ देते हैं। जिस उम्र में उन्हें अपने लिए जीना चाहिए, उस उम्र में भी वे अपने परिवार की भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। पिता शब्द अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करिए, कभी उन्हें दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि जिसने भी तन मन से माता पिता की सेवा की, उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा, वो डूबता

अजधार है माता पिता और परमात्मा जीवन में मिलते नहीं बारंबार है, जीवन में मिलते नहीं बारंबार है। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा ये गीत।

युवा साथियों, वक्त का फरमान है कि कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि माँ की ममता पर दुनिया लिखती है, लेकिन पिता का त्याग अक्सर अनकहा रह जाता है। युवा साथियों, यदि आप घर पर हैं तो भी ठीक, यदि आप घर से बाहर हैं तो जब आप घर जाएंगे तो अपने पापा से एक बात ज़रूर कहना कि पापा, आपके होने से ही मेरी दुनिया है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं साहिल पठानिया आपसे विदा लेता हूँ। आप यूं ही आकाशवाणी FM शिमला के संग बने रहिए। नमस्कार।

लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में अभी सुना आपने ये गीत फिल्म सुर से। अब आपको सुना रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में दिल विल प्यार व्यार फिल्म से गीत।

श्रोताओं, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नियमित और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है और ये तिथि अब 26 जून कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि थी 22 जून, लेकिन अब ये 26 जून कर दी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन की सीमा बढ़ाई गई है, प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी शर्तें, पात्रता मानदंड, विभागवार सीटें और चयन प्रक्रिया पहले की तरह ही लागू रहेंगी। और इसके साथ साथ ही आप जो हैं 26 जून तक पूरी ये प्रक्रिया कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और HPU ने HPU मैट 2026 का परिणाम भी साथ ही साथ घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं और साथ ही साथ आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसके साथ जुड़े रहने के लिए जो है विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसके साथ बने रहें अभ्यर्थी, ये कहा है। तो चलिए, जिन्होंने HPU मैट का एग्ज़ाम दिया था वो अपना परिणाम जो है वो देख सकते हैं और साथ ही साथ आवेदन जो करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमित और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए वो भी कर सकते हैं अब 26 जून तक।

तो आज के इस कार्यक्रम फिल्म संगीत में इतना ही। अब सुमन को दीजिएगा इजाजत और आप सभी यूं ही सुनते रहिएगा FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 4:20 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं स्पीति कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं।

जुलै पिदिमीमा छाङमाला ई आकाशवाणी शिमला इनु ङो छेरिङ पाल्मु धेरिङ कि डेग्रिम गचु नाइन धेरिङ हजायाला स्पीति ला शिक्षा की ची सत्र योगवा रंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना करला यंग याकर की काचा रंग इन्यांबुला लुन्यन पुन्यन पु यन नाइन अंशोला हईपीति नांग दो शिक्षा की ची सत्र गौती करला शुनाइन लापचाते मिया की मिजेला मीनांग मेती खाक्षिन मुजीनु लाभ देखें योंदे योना मिया ते मीनांग मेती तरक्की रंग अतुक फेका लापचा ये ठिया चिकपु मांदा मीते यंग समलो गा योंदन की लाहाला पैचा दिसु मी यरकेत की लामला डोयजे फीला ये लापचाते मीनांग मेती खाक्षिन मुजी इनु अतिसु गा थुआ की जुंगला ची फरको को अति का हाखवा ये लापचा सु मिया की मिजेला मीनांग मिति प्रभाव का चुआ ये लाभ देखन मिया ते आत्मविश्वास रला योगा मिजेला योंदेन खाहू ची योन्ना अतिला तरक्की की लाम तो चुया फिला ये लापचा ते मीनांग मिति जरूरी होगा ये ते चिकपू मांदा अजी मिजे की रंग अजी ग्याकर समाज की अर्कित फिला मीनांग मिति खाक्षिन मूला हाजी इनू देखिन यहाँ पर यहाँ ऐपीति नांग दू यही लापचा की जी यहाँ चुक सत्र कौती ते चुक से कोबा दीरु ऐ दुंचु देवदुन रंग निशु चेपजी प्रतिशत ये लाभ देखन मिया होगा अति नांग दू ऐ फोजा या ते यहाँ गिपचु केपची दशमलव गुपचु खोगरुक प्रतिशत फोजा तेने आने या ते ठुकचु रेंरुक दशमलव निपचु प्रतिशत योगा स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश नांगदू योगा दी ते थारिंगबू छाई मीनांग मेती युल चुकुन चुकुन छाशी ओकावा दी ते मिया नांगबा सांगे की छो फेकन हंदी लुंगबा की मिया मीनांग मेती याकपू योगा दी ते मीनांग मेती देमु सा छु मतपू गुनगा ते मीनांग मेती ठांगमू योगा दी ठांगमू सु खा का मीनांग मेती गेपका लाम या बनफूची मीनांग मेती खाऊ छाई मोटल या बस या मिनवा दिसु यूल मांग चियाला लाभ देखया लियान लाभ कैन टू याला मीनांग मेती खाऊ का योगा दी माथिया हईपीति की मिया लाभ तो फिताला रंग अतुक छाई मीनांग मेती खाऊ छाई फेका दी यूल मांग चियारु ये लाभ देन टू याला तांगजा लवाया फिताल खासांग तांगुशा पीतिरु लाभ दे लापचाला मांग दू तांगजा फिला था मीनांग मेती मिया का समलो शारदेखा दांग तेरिंग की हई सरकार की ची लापना सू टू याला यंग लाभ दे चुकसी और ना होती मीनांग मेती तरक्की का फेखा

कुमारी दोर्जे की लुन्यन पु गाबला था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ला छिंग सुमशुना हिन प्रधानमंत्री कल्याण गरीब कल्याण योजना ते ची इन उबासन औजी ग्या कर की मिनांग छिनमू योजना चिगेनो दी सुमी या मांग छिया हुई मूल की खाहू निम जुंग यो कन्या ला मेतपू रंग गुशी हो कन मिया ला रौ रम द फेचा फिला दी कल्याणकारी सरकार की खाक छिनमू लेहा चिक इनो दी लेहा ते ओई भारत सरकार सु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY सु गोचुआ दी योजना ते मेतपू लिहा फेकन शिंगला आने रंग घुशा योकन जिमे त्याला फेला गोचुआ दी की हई ची खाहू यो की और न होती की सामना चुया फीला दी तेनी तोंग निशु सेना करोना की तुझु सेना गोचुआ दी ते हई ग्याकर नांग दू लॉकडाउन गेपची सु यांग मी आला मीसे सु हई मिया चु खाहू रहा होती है चुहती है कि तुझु न हो सरकार सु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की माध्यम सु ठी मी आला यांग रो राम द फेचा ध्यान दी योजना ते गौसू वंदी योजना की नांग दू मेतपू जिमे याला और यांग मुफ्त की राशन चुए गुशा यो कहीं याला राशन कार्ड तंजी होती राशन सूत निंजा होती ला ठौ डे यांग ची गुशन मार चोरे यांग दाल चोरे और ची सेना यो कन चला याला थोपचे फीला चिला सेना यांग मिया तौरी ला लूना मेहता सु होती ते चिला से मेतपू मिया आने या यांग जन धन खाता नांग दो ऐ मूल चुया फीला यांग दी ते ऐ चुक से ना ऐलम मूल की मदद का पैचा फीला दी उज्ज्वल योजना ते ऐलम मिनाओ में ती यांग लाभ का थोवा सका दी लाओ यांग मुफ्त की राशन का मुफ्त की राशन ते थोपचा थोपचा और यहाँ ऋषिक ला यहाँ गुशा का यहाँ ला मुफ्त की सिलेंडर का थोपका सका यहाँ और मेतपू मी आला इंदी कल्याण योजना ते मिना मेती खाक छिन मूल्य

ढाका पेदा सगा मेतपु याला मूल की सुरक्षा रंग सुनिश्चित पेचा तेंदी की नांगदू यांग और यांग गिनगुन याला यहाँ ऊ मैकन आने याला ओतु चाई यांग यांग वही लाखवा कांगला मैकन मी याला दीते मीनांग मिति खाऊ अकन याला मीनांग या तो रंग रो पेचाला पिलाइनो सका सरकार सु शिंगला फेकन याला सो सो रंग यांग लाभ थोप चाकी यहाँ अति कांदी ला चुआ सांदी योजना के लिहाते ची नुपासन दिया कि मी अला फंतो रंग वही खाहू मैत पूजी मैत याला तोपचा गुशा चला ची यो ना ये थारिंग बो ना कौन मी अला ची गुशा ना तिया राशन क्याल जा होती थे दिकी योजना की लिहाज इनो सगा मी यहाँ भूम मी अला राहत का थोवन दिनांग दो आई ची और मी या मीनांग मी अला मिसर याला मी खाऊ ची और याला यहाँ राशन का थोवा सगंदी रोज योजना की नांग दो और यहाँ आने याला अति खाऊ अंग जमे तक खंच याला टनते चुआ की महत्वपूर्ण भूमिका का दी योजना सु निभाई चुआ सा यहाँ जनगण खाता नांग मूल की तेचा रंग मूल की खाऊ ची यो नदी नांग दो थोवा सगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सु और योकन खाहू ते तुझ लाई सरकार सु निभाई चुआ सका हो तेने दी कि रोहू रमदा पेचा मी अला गुशा ओकन अला या मैत पूजी में अला राशन मांगबू थोपचा होती दे यंग रेगू में ता मी अला दी योजना नांग दो थोपका सका चीजा से दी योजना ते मीना में ते होया ला सफल का होंग वा सका तेने होया मी अला जिनमा अला ताकू में ता खा ताकू में का तेने लहा का मीना में ती चावा दी योजना सु दी योजना ते यंग गा की लाम का चिकी नो सका दांग थिरिंग की क्या कर की यार कित भीला मीनांग में ती जरूरी का होगा मैतपू निमचुंग जी में याला ये लपचा रंग खंजे जूहू लची नाजा में ना होती नाजा या ये मैदा खाद्य सुरक्षा रंग यंग मूल की ची सुविधा गुना खंजा याला थोपचा भीला और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ते मीनांग में ती खाक्षिन मुझी प्रयास का चुआ सगा तिंग शोला यंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ते ठी जिमे याला खाहू तुझे इतला मदद और सहारा ते चाहते दी की योजना की मूल की खाहू रोहू रमदा पहचाते माध्यम चिकेनु सका दीदा आया यंग मिशी लू याला लोन का तेचा किया इंदी योजना ते और इत्सु मेत पूजी में तो ना दिया ला इंदी योजना ते उपयोग पहचा की लोन का तेचा दिकी और जिम्मेबारी और तोले की इनो की और इंदी योजना ची सरकार सुहाई योजना और ना होती क्या की लोन ते मी तोले ला तेचा होती सुहाई राष्ट्र की यार के तंग होती यो का यान तिंग ला मी और सुरक्षित का डुआ दिस नांग दो तेने मी याला जागरूक का दिन सु डुआ दीते यंग दी योजना की कौल लाद सिग्नी सुमीन था आने छिंग डोरमा की लुनियन बुजी न्यादा जा

Diluyan Pugabla tha Kyakar Kilon Up Mukhya Mantri Mukesh Agnihotri Su Rajya Path Parivahan Nigam Ki चालकों से ना मोटल टुलकन रंग परिचालकों सु लंच चीजें यहाँ खोंजाए कि हड़ताल ला लॉक चीन नंजा फिला शुवा खोंगसु तिरिंग शिमला की पत्रकारों यमपुला ला तांगजी राज्य नांगदो शक्ता योंगन मीम मीनंग मियाला परी निगम परिवहन निगम की यंग मोटल ला डुलकन याला माला डुलकन मियाला मीनंग मेती खाहू का योंगा सका खोंगसु शुवा अग्निहोत्री सुशु Di Lahala Yang Yakpu Ma Kong Sushua Rajya Sarkar Ki Chalkon Rang Parichalkon Tobla Yang Di Lapte Dimu Chai Yang Sanubuti Purwak Samlo Tangji Miyala Thulji Yakpu Chai Pecha Chawa Chila Senandi Leha Pekan Rang Pension Ki Yang Petan Nengan Yang Diala Bhuktan Pekuonga Kong Sushua कि चालकों रंग परिचालकों नंबला यंग गुशायों कन मांगो फिला लम जिन्मा कोंसु ताया अधुक शुवा कोंसु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकुसु क्योंकि याला प्रदेश नला नशा मुक्त जुए फिला लम जिक तोनबा सका दी लम ते यंग मिना मिति ऐतिहासिक रिच मैदान दू तंग जिमलिंग की प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप थनथन समारोह की खोंगसु अध्यक्षता चुवा सगा दी आयोजना ला पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ला छाक्सलो छाई दी प्रतियोगिता फेतोक थनथन चु छावा दी प्रतियोगिता नांग तो ज्ञाकर की मिनंग में तिथारिंग बुना योहन मी श्रीलंका रंग थाईलैंड की जिम्बुली नांग की

तई जिंदगी दे सही दिशा ले आगो बढ़ना चाहिए। ताजी जति थोड़ी जानकारी देखा श्रोताओं, मारो भारत देश हमेशा का संस्कृति तई परंपरा का फल फूलवा तई खेल हमेशा का ही मारी क्रिया जिते खेलने तरीके साथी तेते अलग अलग नावा तई खेल खेलनो सभीले बड़ो पसंद आ, चाहे सो छोटुआ चाहे छोटी, ज़्यादा करे लोग खेलाले के फायदा हुआ तई खेल किले जरूरी आ इते बारे दी कई तर्क दया। हर प्रकारो खेल मारे शरीर आले मारे मन आले मारे दिमाग आले बड़ो बढ़िया, जो एक आदमी ले स्वस्थ बढ़ाने मदद करा तई जो हमा भित्री प्रेरणा हिम्मत अनुशासन तई एकाग्रता आना। पर आजकल शहरा का पुराने खेल खत्म गए हुए ताकिले नहीं आज तीना सभी खेला हमें याद करी ताची तितमा एक आजाना पिट्ठू खेली थे हमें तब भारत दे कुछ बाग दे एव खेला ले पिट्ठू या तबे लगोरी भी बोली। कितने भी लोग एव खेला खेली सकी इत सात पाथरे जरूरत हुआ। हर एक पाथर एक ही दूजे का है, मतलब महठे का बॉर्डर चाहिए डाणो ता गढ़ते आ कार्यक्रम आदि पाथर एक ही दूजे गाए डाणे थोड़े दूरा का एक बॉल पाथर डेरा गाए ला फेंकनो। ती इतवाल देखा दूजा गोटे जो खेल पड़े तई छोटू दुए खेले सका इतले पांच गोटे पाथरे जरूरत हुआ इत एक पाथर आवा दे उछाली तई तेव पाथरा धनी डाणे का पहले दूजो पाथर चौकी जो खेल कई लोग साथी खेले सकी इत साथी तोया कंचे छोटू बिचा दे कंचे खेलने सभी का प्रसिद्ध खेल हो तो एव खेला ले जाने की मार्बल का खेली जेता ले कंचे बोली मार्बल बोली एव खेला दे सब कंचे उरी पूरी कुछ दूरी दे ओआ त खिलाड़ी दूरा का एक कंचे का दूजे कंचे दे मारा त जोन खिलाड़ी सब कंचे दे मारा सोई विजेता हुआ त आखिरा दे सब कंचे विजेता ले मिला। ती इतिया खो खो जो भारतो सभी का लोकप्रिय खेलवा एक आ इत दुई टीमा हुआ एक टीम मैदाना दे ध्वनि बेशा सब खिलाड़ी ध्वनि बेशा त सब खिलाड़ी एक ही दूजे का उल्टी दिशा दे मुँह करिया बेशा जोन भी टीम सभी खिलाड़ी दे हाथ हलाया सभी का काम वक्ता दे खेल खत्म करा सोई विजेता हुआ। तो ही अगला गिल्ली डंडा त भारतीय गाँव दे खेलने आड़ा जो खेल छोटू वो मनपसंद खेला इत दुई डंडी हुआ एक थोड़ी बड़ी जोन डंडे बदले उपयोग हुआ तो ही माठे छड़ जले गिल्ली बोली त गिल्ली वो दुई तरफा चाकू का तेज हुआ किएने इतना साथी अच्छी थी पोषंपा एव खेला दे कई लोग जने अपने मुंडा का उजी हाथ पकड़िया खड़े हुआ और साथी गे के गाना बे बोला बाकी सब छोटू तीना हाथ पाड़ी निकड़ा गाना खत्म होने गाए दुए अपना हाथ हुंदी करा जोन भी छोटू तेत फोशा सौ खेला का बारे जा निकड़े एने ही भरी पुराने खेला जोन एवे के छोटूले पत्तो भी नहीं आ खेल भरी तरीके का मारे शरीर ले पोषित करा। पर आजकल के छोटू जो सब मोले मोले नहीं लगता कि कौल है इना खेला बारे दे पत्तो भी हो, मतलब शहरे गोल तो तुम्हें छाड़ ही पोरू गाँव में छोटूले भी एवे इना खेला बारे दे पत्तो नहीं आ जोन भी देखी सोई मोबाइल आदि लगन तो जो हमारे अनुशासन तो अपने लक्ष्य पाना ले लगातार अभ्यास करनो शिकेवा हम अपने छोटू ले इना खेला बारे दे बताना चाहिए जिता का सो टीवी और मोबाइल का दूर रहने तिना ले हमेशा खेला दे भाग लेना ले बोलनो चाहिए बताना चाहिए जिता का तीनों शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकास होनो। ताजी श्रोताओं जो गलबात एवे शुणी एक बढ़िया जो लोकगीत।

तोई स्वदेशी प्लेटफॉर्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिक तोई दुकानदारा का वोकल फॉर लोकल पहले का भारत दे बने नी चीज़ों समर्थन करना ले बोलो जिता का देश है लोग आत्मनिर्भर होने परंपराओं सम्मान तोई रक्षा ले मजबूत करनो आ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है मिशन सुदर्शन चक्र शुभारंभ भी ऐलान कियो जितो मकसद दुश्मने रक्षा घुसपैठ हले बेअसर करनो तोई भारत आक्रामक क्षमता बढ़ाने तिने एव मिशन ले पौराणिक श्री कृष्ण जी है सुदर्शन चक्र का जोड़ो आ और एव गोला गए परशे पाकी कहण के भारत आधुनिक रक्षा नवाचार दे मार्गदर्शनालय अपनी समृद्ध संस्कृति तोई पौराणिक विरासता का प्रेरणा लिया। ताजी जोते थोड़ी जे गलबात एबे डिउंदा डिउंदा सुनी एक बड़ी आ जाओ लोकगीत।

किन्नौरिंग बैसी नमस्कार जो आकाशवाणी शिमला केंद्र तो जो प्रोग्राम कल्पारंग कुल्लू रिले केंद्र लिया चो बैसी सुरेश ने की तुरुक सुक्रियों प्रोग्राम निशीस हाजिर तो बैसी तो दम तो जाग आशा लानो तो की फाइलो प्रोग्राम रोची बैसी दम की नीचे कि तुरुक सु प्रोग्राम रूपरेखा बारे जानकारी के तो कि भाई प्रोग्राम कुमो तत्काशी तो बैसी ख्याज तक कि भाई आमतौर दिन प्रोग्राम कुमो गीथम वार्ता रहें कि खबर सार नीच नहीं हो लेकिन तुरो प्रोग्राम कुमो कि प्रदेश खास खास खबर सारू बारे जानकारी के तो नहीं हो खबर सारू कुमो बैसी खबर सारू कुमो ख्याज तक कि भाई उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से राज्य पथ परिवहन निगम चालक तंग एक परिचालक जो संघ पंग बेरंग जो ई बेरंग लोशित की भाई जो प्रस्तावित हड़ताल पंग वापिस उन्मुदाय से आह्वान लंशित अनिन से तुरो शिमला पत्रकार वार्ता कुमो बतंगचू कुमो अनिन सिंहशित की भाई राज्य जो प्रतिदिन दियारू कुमो हजारों मिगा जो ख्यात की भाई परिवहन निगमों बसों कुमो यात्रा लंसरों जो बताऊँ जानकारी अनिन से जो पत्रकारों माध्यम ने रंशित नहीं हो अनिन सिंहशित की भाई जिंग नेस्लो भी मुतैस बस का अलावा आयत विकल्प लिमाइसरों जो बताऊँ जानकारी अनिन केशी नहीं हो अनिन सिंहशित की भाई होइस्क जो जानकारी मुताबिक से जो चक्का जाम लाने के ईद जो किसी हालात सूरत दिन जो दम माइस जो बताऊँ जानकारी रंशित नहीं हो अनिन सिंहशित की भाई राज्य सरकार चालक तंग एक परिचालक उच्चई जायज मांग पंग सहानुभूतिपूर्वक विचार लानो दूर हो जो बताऊँ जानकारी केशी नहीं हो आय रंशित की भाई जो ख्यात की भाई जो शुमनंग आदंग बोशंगजू दौरान जो कर्मचारी रंग एक पेंशनर पंग वेतन रंग एक पेंशन भुगतान लांछित रहो जो बताऊँ जानकारी केशी अन्य संक्षित की भाई चालक तंग एक परिचालक पुंग अनेगन मांगू मनयामू तैंस चक्का जाम का बजाय आयत ओम पुंग अपने आमा तंग मा दामनी तो रहो जो बताऊँ जानकारी केशी बैसी देंची तो का आयत खबर सारू कुमो प्रदेश मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से युवा शक्ति पंग देश कुमो नशा मुक्त लानु तहस जो दिशा अपने आमु तहस सक्रिय योगदान देन अनिन से आह्वान लंशी अनिन से तुरो शिमला ऐतिहासिक रिज मैदान दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप समारोह जो शुमिक समारोह अध्यक्षता लानो लोशी देंची जो आयोजन ख्याच की भई ओम्स मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी जो समृति देन लांछित नहीं हो जो प्रतियोगिताओं मिशा छुपा गर्भ राति जो शुंगशित रहो जो बताऊँ जानकारी की शीत नहीं हो जो प्रतियोगिताओं को भारत इलावा श्रीलंका तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के थाईलैंड देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो मुक्केबाज जो भाग तो शीत जो बताऊँ जानकारी की शीत नहीं हो मुख्यमंत्री जी श्रृंगशित की भई होयस्क प्रतियोगिता पर सफल जो आयोजन होता है आयोजकों से कोई प्रशंसा लांछित नहीं हो अनिन लोशित की भई होयस तरासु जो योजमी प्रतियोगिता माध्यम ने जो युवा छांगान होते हैं जो आकर्षित लांस रहो जो बताऊँ जानकारी की शीत नहीं हो अनिन श्रृंगशित की भई नशा मुक्त समाज होते हैं ईद जो योजमिक बेहतर प्रयास रहो जो बताऊँ जानकारी की शीत नहीं हो जो मौका दिन ख्याल तक कि भई लोक निर्माण महकमा मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह के ओम सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो उपस्थित तो सुनियो बैसी दिन ची आयत खबर सारू कुमो ख्याल तक कि भई सांसद श्री सुरेश कश्यप जी से तोरो कालाम पौंटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जो ख्याल तक कि भई मारकंडा नदी दिन जो हाची से ईद करोड़ से ईद रा करोड़ से 15 मीटर जो ख्याल तक कि भाई यूं जो खजुराना पुल उद्घाटन लाइसी नहीं हो जो मौका दिन ख्याल तक कि 20 करोड़ रुपये वो लागत से बुशित हो जो बताऊँ जानकारी की शी नहीं हो केंद्रीय सड़क परिवहन रंग के राजमार्ग मंत्री

नितिन गडकरी जी से जो अनिन व्यस्तता कारण से जो पुल वर्चुअल माध्यम ने जो लोकार्पण लानू तय समा भूषित नहीं हो जो बताऊँ जानकारी की शी नहीं हो जो मौका दें सुरेश कश्यप रिंशित की बही जो पुल हजमी देंची हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड भूमिका रंग एक एक विशेष फायदा चोर हों जो बताऊँ जानकारी की शी अनिन रिंशित की बही केंद्र सरकार सोलों को निर्माणों तय भरपूर धनराशि की दोनों जो बताऊँ जानकारी की शी नहीं हो जूस ख्याज तक कि भाई प्रदेश हुकुमो निजो निश हज़ार से ईत राव पुनिजो सै करोड़ रुपये जो ख्याज तक कि भाई सड़क जो परियोजनाओं निर्माणाधीन दूसरों जो बताऊँ जानकारी किए शी भाई से तो चूता तो के तुरु तो प्रदेश खास खास खबर सारू बारे जानकारी नहीं हो कश्त तुम ईद की तंग सुना चुकनी हो और उन चीज भाई से सुदर्शना नहीं गुका दो जो की तंग।

बैसे दुख किनास गीथंग तो रोंची नहीं हो जो गीथंग कलाकार तो किसान ही सुदर्शन आ रहे हैं कि दोनों को ने अनुकादो नहीं हो बैसे ख्याल तक कि भाई काशा आने नहीं हो कि भाई काशानु फैलो सु संस्कृति तेतरा दाम नहीं के कि तेतरा काशानु तैसी माओ को चंग तो कुछ इतनी हो जो पातंग पंग ध्यान तामी वाल जरूरी नहीं हो आई आई बताऊँ को काशा ख्याल तक कि भाई काशा तेतरा गीथंग आशा रोंची मातंग माँ जो माओ सुवंग संतंग पंग या लंचित नहीं हो होदेश की ख्याल तक कि भाई काशानु देश ख्याल तक कि भाई कृषि प्रधान देश नहीं हो जिन ख्याल तक कि भाई काशांगा माऊँ माटेंगों ची वाल ऐसा दम नहीं कि सही प्रकार काशांगा किसिम किसिमों काशांगा ख्याल तक कि स्कंदें लेकर जामु तुमु दस काशां से चीज बंग ऐसा मोनंग एक आखंग काशां लंदा तक माँ जोर काशानु माटेंगों को से चीज उत पैदावार हाजिर नहीं हो ख्याल तक कि भाई ओमी जमानों को माली हालात दम मनी भी कारण इसलिए काशा सिर्फ तंग सिर्फ सोच ख्याल तक कि भाई रल जोक्स नहीं हो लेकिन पर्याप्त मात्रा दिन काशा सही चीज़ माऊँ देशों को हाजित नहीं हो लेकिन तुरो काशा पीढ़ी दर पीढ़ी ख्यामा तक माँ जो चीज़ों को अभाव रंग एक एक सांदा दौर दौर दो दो पैदावार को कटौती ली हाची नहीं हो थूरंग माता माँ काशा ख्याच कि भाई लगे सु कारण बम दम मबंदी को कारण मिगानु सांदा आराम प्रस्तंग एक एक सही मिगानु माली हालत सुधार हाची में कारण दो हाची नहीं हो जुदा ई बतंग नहीं हो लेकिन आयत बताऊँ कुमो काशा ख्यामा तंग माँ तोरो ख्याच तक कि भाई काशा आराम प्रस्त जीवन व्यतीत लंदन टोत नद बोधी हाचू नहीं हो जो चीज़ पंगी काशा ध्यान तामी वाल जरूरी नहीं हो घाटो मात्राओं कुमो काशा दम चीज़ पंग काशा रेदो नहीं हो लेकिन ख्याच तक कि बोधी मात्राओं कुमो काशा शोंगसू चीज़ पंग जोगो नहीं हो जो चीज़ दिन काशा ध्यान तामा तंग माँ काशा ख्याच तक कि भाई से किसी जानकारी की दो नहीं हो कि भाई काशा प्राकृतिक खेती पंग अपने आमा तंग माँ जो माओते हैं सवाल फायदेमंद नहीं तो रो जो बताऊँ जानकारी काशानु सिर्फ ख्याच तक कि जो काशा जो फोनो माध्यम दें ची या बतंग चुको माध्यम दें जो मानी नहीं हो लेकिन धरातल दिन काशा जो चीज़ पंग अपने आमा तंग माँ जो काशानु गुणकारी नंग फायदेमंद नहीं के लाभकारी सीधा चो बैसी होदेश की ख्याल तक कि भाई जो चीज़ पर निकाशा युवा पीढ़ी जोर से अमल लन्न दो पंग लन्ना तंग माँ जो वाल फायदेमंद अंग एक काशानु तैंस ख्याल तक कि भाई वाल दाम नहीं तो नहीं हो थूरंग मत मा काशा ख्याल थे युवा पीढ़ी ही काशानु समाज दशा रंग दिशा पंग तेह लंस नहीं हो जो चीज़ पर निकाशा नहीं भी नहीं हो होदेश की ख्याल तक कि भाई काशा माऊ फाइलू कुमो काशा ख्याल थे कि भाई समय समय दिन काशा से चीज़ पंग पुष पुष तैयार लंस नहीं हो सिर्फ रंग काशा राल पंग सर चीज पंग दो लंच नहीं हो ओमी जमानों को मुकाशा बायरंग सिर्फ राल ही सोक्स नहीं हो बाकी चाहिए काशानु पैदावार हाजी नहीं हो ख्या कि भाई चुलती लंगलो सीमा तक चाहिए चीज पंग काशा दो माऊ फाइलों को पैदा हाजी नहीं हो लेकिन दो जामू बिरंगली दो नुकसान माइज नहीं हो लेकिन ख्याच तक कि भाई काशा ओमी जमानों को काशा ख्यामा तंग माँ रारा वो शंख तंग काशा जीवित तोशो नहीं हो लेकिन दो ख्याच तक कि भाई आराम प्रस्त जीवन ली मानी नहीं हो कमंगली लंच नहीं हो जामू तैंसली तो वो ऐसा दम तरीका से दो लंच नहीं हो लेकिन जो चीज़ में कशा ध्यान तामा तंग माँ कि तुरोली कशा ख्यामा तंग माँ ओमी जमानों को कशा ख्या थे कि भाई तितरा कमंगला नन महान नन नीमा तंग माली कशा शुपा थत न थत जुरिया जहाज नहीं हो दो कशा फायदे रंग एक गुण लोशीमा तंग माँ दो वाल गरब दो नहीं हो लेकिन तुरुक तु दियारे कुमो कशा देखा देखी कुमो बीबी बहरंग सु जाओ नहीं हो जू स्लोट नाथ बोधिया चो नहीं हो माऊ माऊ कीमो सु चीज

कशा मजा होनी हो जो चीज़ दिन ध्यान ता मी वाल जरूरी नहीं हो लेकिन क्या कशा ख्याच तक कि भाई ख्यामी को कोचंग बीमा तक माँ दो टेस्ट में अपने आमा तक माँ कशा फाइलो सू चीज़ में कशा बोशी नहीं हो कशा नु ईद प्रयास चू लंदी नहीं हो भाई कि भाई कशा से युवा पीढ़ी ईपोल्टंग हुए सुनचन ना कि भाई कशा नु फाइलू को चंग बीते रहो युवा तंग पंग अपने आमा तंग माँ जूस कशा तरक्की लंच होनी हो दिनची माली हालात कुमो सुधार लिया चोनी हो दिनची आई बताऊँ कुमो कशा खेचे माऊँ स्वास्थ्य खुराक बारे ली कशा नु सुधारा चुनी हो जो चीज़ पंग अपने आमा तंग माँ जो पंग कशा ऐसा दम तरीका से बारीकी तौर दिन रोंची माँ तंग माँ जूस कशा तरक्की तो लंच हो ही नहीं हो लेकिन खेचते कि भाई माऊँ खुराक कुमो गर्भ परिवर्तन हाचोनी हो जो बातंग पंग ध्यान तामी वाल जरूरी नहीं हो कशा ख्याल थे कि बुजुर्ग मी गा रहे कि चूक शीस बातंग चूक बातिया शीस दो रहे कि आने गनो अमी जमाना चू बातंग पंग सांझा लन्ना तंग माँ दो दंग से जानकारी हासिल आ चीज नहीं हो लेकिन ख्याल थे कि होदिकंग मेहनत लानमी को न्यूम्स ली तो रो ख्याल थे कि भाई थी टोतना तमाइज नहीं हो लेकिन सिर्फ सिर्फ तंग सिर्फ ख्याल थे बुजुर्ग हाचिस नहीं हो लेकिन मोनंग नंग एक एक दो दोगोनो ड्यांग दो अमी जमाना चु कशा दी तुरुक चुदारू कुमो कशा न्यूम चु पीढ़ी ख्यामा तंगमा देरंग पता चले कि वाकई भाई दो समय वाल दान दिए लेकिन तुरु कशा नु फायदा मुताबिक इस ख्यामा तंगमा या कशा आराम प्रस जीवन देंज ख्यामा तंगमा कि भाई दो नहीं हो कशा आराम प्रस था जी नहीं हो लेकिन दो समय वाल दम तो नहीं हो समय हाथी मलंग ची नहीं हो कशा ख्याते कि सोम हाची मा तंगमा छुपा हाची नहीं हो लेकिन समय हाला बदले दू तो कशा नु मलंग ची नहीं हो समय पुन कशा न्यूम्स याद लन्ना तंगमा तेरंग समय कशा दो मलंग ची नहीं हो खुदिश की कशा ख्याते कि भाई प्राकृतिक खेती पुंग अपने कशा ऐसा दाम तरीका माओ फाइलू कुमो जू चीज पुंग कशा दाम तरीका लन लन दो पुंग शोंग चू चीज पुंग मजा जा माओ फाइलू चू रिमो चू लंशी तो चीज पुंग जामा तंगमा जू कशा नु गुणकारी नहीं के लाभकारी सीधा चुनियो जू आशा नहीं कि कच्चे तुम आई की तंग सुना चुनो चीज वैसी जू की तंग।

वैसे तो किनास गीथंग तरोन चीज नहीं हो ख्याज तक कि भाई तुरमेनो गोइनियों को बदलाव नहीं हो जोर काशानु ख्याज तक कि भाई ईसा रांग नीमा तंगमा त्यू मात्रा बोधी से बोधी काशान दो त्यू प्रयोग लड़ना तंगमा जू काशानु तैंस फायदेमंद नहीं तो नहीं हो तीपुंगली काशान कॉस्को ख्याज तक कि भाई ऐसा ठंडा लनन तुम्मा तंगमा जूस काशानु सेहतु तैंस ली वाल फायदेमंद नहीं हो तेतरा ती तुम छो जू काशानु तैंस गुण शोल मौसम को जू वाल दम नहीं की फायदेमंद नहीं हो वैसी तो रंग की काशा ख्याते कि भाई सोम सरशीस ज़्यादा तुमसी नहीं हो आम तौर दिन काशा ख्याते शुरुआती तौर दिन काशा जू लंच नहीं हो लेकिन जोरली काशा ख्याते कि भाई काशा लाइची देश की या अदरक ऐसा कुटिया ऐसा दो लन्ना तकमा जूली काशानु ज़्यादा हो ये काशानु ड्याऊँ तें फायदेमंद मानी नहीं हो दो लोशी माता वाली काशा ख्याते कि भाई तो अदरक को सेवन लन्ना तकमा जू वाल दम नहीं कि गुणकारी नहीं हो काश तो मग बीरंग बीरंग आएगी थंग सुनिया चुकनी हो रंजित भैसी मायूम नहीं क्यों कदो जुकी था।

अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम, आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 6:05 पर। इस समय 5:50 हुए हैं और आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत। विजय संधू और सखियों की आवाजों में गाया ये लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं।

रीना ठाकुर की आवाज में गाए इसी लोकगीत के साथ लोकगीतों में अभी बस इतना ही। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है, 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आज रात 12 बजे के बाद से चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यूनियन के पदाधिकारियों की राज्य सरकार व निगम प्रबंधन के साथ बातचीत बेनतीजा रही है और चालक व परिचालक अपने रुख पर अडिग है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कर्मचारी यूनियन से जनहित में चक्का जाम ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी ESMA लागू किया है और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निहोत्री ने कहा कि यदि कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो चाबियाँ तुरंत सरकार को सौंप दें। इस बीच हड़ताल से पहले प्रदेश में आज से राज्य परिवहन निगम में चालकों की अस्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर अभ्यर्थियों ने भर्ती में भाग लिया। नाहन डिपो में चालकों के 25 पद भरे जाने हैं। नाहन के क्षेत्रीय प्रबंधक रामदयाल ने बताया कि चयनित चालक को प्रतिदिन 1500 रुपये वेतन दिया जाएगा।
1: बसें चलाने के लिए जो चालक उनको आज जो चयनित होंगे पास होंगे बस के लिए अगर हम उनको डिक्यूट करते हैं तो 1500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। ये पूर्णतः अस्थायी रूप से है। नाहन डिपो के लिए अभी 25 पद है चालकों के लिए, अभी हमारे पास 450 लोग पहुंच चुके हैं।
0: नाहन नगर परिषद में आज अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव करवाए गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 7-7 वोट प्राप्त हुए। ऐसे में ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान को अध्यक्ष और भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा को उपाध्यक्ष चुना गया। नव निर्वाचित अध्यक्ष उपमा धीमान ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर शहर के विकास के लिए कार्य करेंगी।
2: हम सभी का जितने भी 13 पार्षद है और इसमें कोई काम में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हम सब एक हैं। इलेक्शन जब तक था तब तक की बात थी, अब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस ने भाजपा समर्थित पार्षदों को डरा धमका कर अपने पक्ष में करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि नाहन नगर परिषद के 13 वार्डों में से भाजपा समर्थित 7 पार्षद जीते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कानून में तोड़ मरोड़ कर स्थानीय विधायक को वोट का अधिकार दिलाया है।
3: हर प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, परंतु मुझे आज

0: बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनकी पूरी कांग्रेस के भारी भरकम दबाव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट दिया। हिमाचल के इतिहास में यह बात दर्ज हो जाए कि किस तरह से जनता के मत को हाईजैक किया जाता है, वो हाईजैक किया गया।
1: राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने की कवायद के विरोध में निगम कर्मचारी महासंघ ने आज धरना प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हुकुमराम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुल्लू, मनाली, रोहडू, रामपुर और कसौली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निगम के होटलों को बंद करने या निजी प्रबंधन को सौंपने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों व प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है और BOD की मंजूरी के बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। हुकुमराम ने कहा कि राज्य पर्यटन विकास निगम घाटे में नहीं है।
2: आज प्रदेश सरकार हमारे जो 8 होटल है उन्हें ONM बेसिस पे देने की बात कर रहे हैं। हमारी जो कॉरपोरेशन है वो घाटे में नहीं है। हम इसलिए बात करते हैं कि जब से ये ONM की प्रथा सरकार ने लाई है ना, तो ये BOD में ये पास होके गई है, क्योंकि हमारे जितने भी एजेंडे होते हैं वो BOD ही उसके फैसले लेते हैं, जो कि हमारे HPTDC के हैं। और इन्होंने बीच बीच में हमारी जो बुकिंग है वो भी बंद कर दी है। इसके बावजूद भी हमारे को ये पर्यटन निगम को ये बोलते कि घाटे में जा रहा है। हमने जब से सरकार बनी है हमने कहा कि हमें 50 करोड़ की आवश्यकता है। अगर ये 50 करोड़ अगर आप हमारे दी जाएगी इसकी ग्रांट के तौर पे, तो मेरे को लगता है कि हमारा टूरिज्म फिर से एक बार फिर अच्छी अपनी पटरी पे आ जाएगा।
1: किन्नौर जिला के पूह उपमंडल की रारंग पंचायत में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु सांगेस पर्व आज बौद्ध परंपराओं के अनुसार संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खराब मौसम के कारण समापन समारोह में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में बौद्ध गुरु छोगेन रिनपोछे ने इस पर्व का दीप प्रज्वलित कर समापन किया। उन्होंने कहा कि ये पर्व पिछले 55 वर्षों से मनाया जा रहा है और 8वीं शताब्दी के महान आचार्य गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। समापन समारोह में छम नृत्य और किन्नौर का प्राचीन रोला रोलाने नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी एक साथ रिले किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। आकाशवाणी शिमला के सभी कार्यक्रम आप DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी शिमला से आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं बिलासपुरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं।

जी ऐसे जो पीने का पानी आ, तीसरी हाँ जो बचत भी करनी और तीसरों जो ऐसे साफ सुथरा भी रखना और सोगी सोगी जैसे साफ सुथरा पानी स्वच्छ पानी जैसे पीना ताकि अहाँ जरा शरीर असि स्वस्थ रहो। और अगर अहम लगा कि जो पानी अहें पी रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा नहीं है सेहती खातर तो तीसों या जरूर कम से कम 15 मिनट बॉडी ने जैसे पानी पीना ताकि अहाँ जो शरीर ठीक रहो। और गर्मी के मौसम खूब पानी जी ऐसे पीना तीसते अहर शरीर का जो पानी रस्ता अस बने रहे हैं और अहर जो शरीर है चुस्त दुरुस्त जी अस रहे हैं। खाने पीने का भी परहेज करना क्योंकि इन्हों मौसम जी इस मौसम जी अस हमारा पेट ज़्यादातर जी अस खराब हुआ और शरीर च पानी की कमी भी हुई अगर अहम जो जी अस डिहाइड्रेशन हुई हो तो थोड़ा पानी का अच्छा पानी पीना और पानी जी अस खूब पीना या जेडे ज़्यादा पानी और फल चाहे तरबूज हुआ चाहे से खीरा हुआ ये चीज़ा जी असं खानिया ताकि गर्मी के मौसम हमारा जरा शरीर से चुस्त दुरुस्त जी असं रहो। ये छोटी जी गल थी कने हूँ अह कार्यक्रम की शुरुआत करने लोक गीत सौगी तो पहले सुनाए लोक गीत तिसते बाद जी असं फिर अगली गलबात हमारे कार्यक्रम चाह करनी।

राग कने गणेश तारा भी जो ऐसे मंदिर होती है, और छोटे छोटे और भी उठी जो ऐसे काफ़ी सारे जो ऐसे मंदिर हैं। तो जोड़ा मुख्य मंदिर आ से जोड़ा भगवान लक्ष्मी नारायण आ तीसो समर्पित आ, कने मंदिर आए गर्भवृत जो ऐसे भगवान विष्णु कने माता लक्ष्मी ने जी ऐसे बहुत ही सुंदर जी ऐसी मूर्तियाँ उत्ती स्थापित की गई रही। ये जो मंदिर आ सवेरे 5 बजे तो रहने राती 9 बजे तक जी अस खुला रहे हैं, और पूरे बाजार आए लोग शहर आए लोग जोड़े और भी बिलासपुर आए कने आसे पासे लोग जी ऐसे इतनी जी ऐसे जरूर जी ऐसे जाए। और तजी सवेरे रही कने संझ की आरती हुई तक काफ़ी संख्या जी ऐसे इतनी जी ऐसे स्थानीय श्रद्धालु पूजा हैं कने आरती है जी ऐसे स्थल हैं। दिन आई वक्त भी जो लोग बिलासपुर आवे से जरूर इस मंदिर जो ऐसे उत्ती मत्था टेकने जो ऐसे जाएँ, और इस मंदिर जी ऐसे पूरे बिलासपुर जिले जी ऐसे काफ़ी ज़्यादा जैसे मान्यता है। ये जो मंदिर आ ये इतने आने श्रद्धालुओं जो ऐसे एक शांत कने सुकून भरा और सोगी सोगी एक आध्यात्मिक माहौल जैसे उपलब्ध करवा, और पूरा साल जो इतनी जैसे श्रद्धालु आते रहें, पर जोड़े दूरा तो आने वाले लोग श्रद्धालु हुए से तेनाली आना भी इतनी आसान आ, बिल्कुल बस अड्डे के सामने आ। और इं तो पूरे साल इतनी जैसे श्रद्धालु कभी भी जैसे आई सक हैं, पर जोड़ा सितंबर तो लेने मार्च के बिचरा जोड़ा समय हुआ ना ज़्यादा गर्मी हुई ना ज़्यादा ठंड हुई इतनी, तो ये बिलासपुर भ्रमण खातर भी उत्तम मन जा कने जोड़े इतनी और भी घूमने जगह है तेना खातर भी ये अच्छा वक्त जो ऐसे मन जा, तो इस वक्त जो ऐसे काफ़ी लोग जो ऐसे इस मंदिर जो ऐसे आवे, तो जोड़े सुनने वाले तेना भी जल्दी भी टाइम लगो बिलासपुरा कभी से जाओ तो बिल्कुल अड्डे के सामने मंदिर आ उठी जाए 10 मिनट बैठी नहीं जो ऐसे एक काफ़ी सुकून कने शांति जी ऐसे हमारे मन जो ऐसे मिला है। ये छोटी एक गलबात थी जी खास खास खबरें से भी लगानी है। तुम्हारा पहली खबर भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जी ऐसे राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों कने परिचालकों जो एक बार फिर अपनी जी ऐसे प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने जैसे इतने आग्रह किया। अज शिमले च पत्रकारा सौगी जी ऐसे बातचीत ने बोलिया कि प्रदेशा जी ऐसे हर रोज़ हजारा लोग जी ऐसे परिवहन निगम की बसा च सफ़र करें कने इत्थी आने जाने खातर बसों के अलावा होर कोई विकल्प नहीं आ। तिने बोलिया कि राज्य सरकार जी ऐसे चालकों कने परिचालकों की सारी जायज़ मांगा पर जी ऐसे पूरी सहानुभूति कने जी ऐसे विचार करी कराई कने पिछले 3.5 साल जी ऐसे इस दौरान जी ऐसे कर्मचारियों कने पेंशनरों जो ऐसे वेतन कने पेंशन का भुगतान जी ऐसे कितिया गया। अगली खबर है कि सांसद सुरेश कश्यप ने अज जी ऐसे काला अंब पौंटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जी ऐसे मारकंडा नदी पर बने रहे 180 मीटर लंबे खजूरना पुल का उद्घाटन जी ऐसे कितिया। इस पुला निर्माण पर जैसे 20 करोड़ रुपये की लागत जैसे आए रही। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने बोलिया कि पुला रे बनने ते जैसे हिमाचल कने उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों बसरे लोगों जो जैसे विशेष लाभ इसरा मिलना। तिने बोलिया कि केंद्र सरकार जैसे सड़कों के निर्माण की खातर भरपूर राशि जैसे दे रही कने इस वक्त जैसे प्रदेश 22,190 करोड़ रुपये की जी सड़क परियोजनाइयाँ से निर्माणा देनी। ये खास खास खबर थी। तो चलते चलते एक लोकगीत और लगाना तो सुना ये लोकगीत।

रविकान्तकस्य परिगारेस लोकितस गुजरः बिलास्पुरी कार्यक्रमैस्र वक्तुगिरा तत्सबडि शृणोति इजासलेन्दे नमस्कारः।

बिलासपुरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला पर इस समय आप आनंद ले रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का। 6:35 हुए हैं, आइए सुनते हैं कुलवी कार्यक्रम।

नमस्कार जी, ठाराकर डुरी जय जयकार। हाँ, साक्षी ठाकुर तम सबिरो स्वागत केरु आकाशवाणी रे एउ कुलवी कार्यक्रम जे। तेजी सोंस के बजी गए 6:35 ते समय आसा अपने कुलवी कार्यक्रम रा। शुभ ले माणु औस के मारे एउ कार्यक्रम हम आगल बात केरनी दुई महत्वपूर्ण विषय गए। जे तमंजे मारो पहलो विषय आसा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, होर मारो दूजो विषय आसा कुड़ू जिले रे विशिष्ट परिधान। तेजी शुभ ले माणू कार्यक्रम री शुरुआतन सभीन पहले पेश आसा तम सभी ले एक शुभ लोजो कुलवी लोकगीत उषा शर्मा री आवाजन।

तेजी शोभले माणु उषा शर्मा री आवाजन और खूबसूरत जो लोकगीत तुम्हें तो सुनो ते ओसके मारी उकुलवी कार्यक्रम रे पहले पड़ावन हामा गलबात केनी एक एही महत्वपूर्ण योजना रे बारे जुण मारे देशा रे पारंपरिक कारीगरा होर शिल्पकारारी जिंदगी जी सकारात्मक बदलाव आलने रो काम केरदी लागे दिया सा। यह योजना रो नाव आसा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। शोभले माणु भारतारी पहचान सदियोरी आपने कुशल कारीगर हस्तशिल्पी होर पारंपरिक व्यवसाय संगे रोई दिया सा। मारे ग्रावां होर कस्बे जी यह कई लोग आसा जुण बढ़ाईगिरी लोहारगिरी सुनारा रो काम माटेरे भांडे बनाने रो काम दर्जी रो काम होर राज

महत्वपूर्ण कदम आसा. ग्रामीण क्षेत्र जी रोजगारारे अवसर बढ़ाने जी भी ओ योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभांदी लागिरी आसा. जे भी स्थानीय स्तरा जी रोजगार उपलब्ध होने ते लोगारो शहरारी ओर पलायन भी कम होनो. इतसी थी ग्रामारो विकास होनो और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होनी. शुभ लेमाणुओं, हम असो भी ओ समझनो लागनो कि मारे कारीगर सीधी चीज़ ने बनाउंदे बल्कि सी मारी परंपरा, संस्कृति और इतिहास भी जीवित डहा. तिनारी हाथारी कला भारतारी पहचान आसा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तिनारे सम्मान, विकास और सशक्तिकरणारी दिशा जी एक सराहनीय प्रयास आसा. जे तो मंजे या थारे आसपास कोई पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार आसा ते तेउ एहा योजना रे बारे जरूर जानकारी दे. सरकारी योजना रो वास्तविक लाभ ते भी संभव आसा जे भी पात्र व्यक्ति तेणी सही जानकारी पूजा होर सौ इना अवसरारो लाभ उठावा. तेजी अंताजी, हाँ बस ओई बोलनो चाहूँ कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सीधी एक सरकारी योजना नहीं आसा बल्कि ओ भारतारे मेहनतकश कारीगरा होर शिल्पकारारे सुपने वे नवी उड़ान देने रो एक माध्यम आसा. ओ योजना आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत होर विकसित भारतारे निर्माणा जी एक महत्वपूर्ण योगदान देंदी लागिरी आसा. तेजी शुभलेमाणू, एवं संदेशा सिथी मारे कार्यक्रमारी पहली जानकारी इधी मजे समाप्त हुई. हैवे तुम्हारा सोबिले पेश आसा एक होर शुभलो कुलवी लोकगीत, कृष्णा ठाकुर होर धर्मेंद्र शर्मारी आवाजन.

तेजी शोभले माणू तुम्हें सुनते लागे दसा कुल्लवी कार्यक्रम होर कार्यक्रम रे दूजे पड़ावन हामा गलबात करनी हिमाचल प्रदेश रे प्रसिद्ध होर शोभले जिला कुल्लू रे विशिष्ट परिधान रे बारे। कुल्लू जिलो अपनी प्राकृतिक सुंदरता समृद्ध संस्कृति होर परंपरा होर हस्तशिल्प कला ले पूरे देशा जी प्रसिद्ध सा। इधरे पारंपरिक जिकड़े सीधे पहनावे रे साधन नहीं आसा बल्कि सी इधारी संस्कृति पहचान होर गौरवारो प्रतीक भी आसा। कुड़ू घाटी वे देव भूमि रे नावा संगे जाना इधारी जीवन शैली रीति रिवाज होर पहनावो प्रकृति होर स्थानीय परिस्थिति संगे गहराई सीधी जुड़े दे आसा। पर्वतीय क्षेत्र होने रे कारण के इधारो मौसम ज़्यादातर ठंडो ही रहा। इता तेणी इधारे लोग यह परिधान विकसित किया जुण गर्म होने संगे संगे आकर्षक होर आरामदायक भी होए। कुड़ू रे पारंपरिक जिकड़े जी उन्नी कापड़े रो विशेष महत्व आसा। शुभ लेमाणू जेबी भी कुड़ू रे विशिष्ट परिधानों री गला होआ ते सभी न पहले कुल्लवी शॉला रो नाव सामने इच्छा। कुल्लवी शॉल अपनी उत्कृष्ट बुनाई शुभले डिजाइन होर रंग बिरंगे बॉर्डर ले विश्वभरा जी प्रसिद्ध आसा। यह शॉल स्थानीय बुनकर अपने हाथ सीती तैयार केरा और कुल्लू शॉल सीधो एक वस्त्र नहीं आसा बल्कि इधारी सांस्कृतिक विरासता रो एक महत्वपूर्ण हिस्सो आसा। ऐसा शॉलारी मांग देशा जी ही नहीं बल्कि विदेशा जी भी आसा। कुल्लू शॉलारे जुण डिजाइन आसा सी विशेष रूपा के आकर्षक करने आड़े हुआ। ऐसा शॉला जी ज्यात्मक आकृति पारंपरिक नमूने होर प्रकृति संगे प्रेरित कलात्मक रूपांकण भालने ले मेड़ा। लाल होरो नीलो प्यूणो होर काले रंगरो सुंदर संयोजन ऐसा शॉला जी भालने ले मेड़ा। सालावरी और कला पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होंदी लागी दिया सा। कुड़ू जिले रे पुरुषा रे पारंपरिक परिधान भी अपनी एक विशेष पहचान डहा। पुराने वक्तन पुरुष उन्नी चोड़े पजामे होर सदरी बना थे। ठंडा के बोसने तेणी उन्नी पट्टू होर शॉला रो भी उपयोग किया थे। विशेष अवसर गोए पारंपरिक परिधाना बानी गोरे लोग अपनी संस्कृति रे प्रति सम्मान व्यक्त किया थे। कुड़ूरी पहचाना रो एक महत्वपूर्ण प्रतीक आसा कुल्लवी टोपी। और टोपी न सीधी हिमाचला जी बल्कि पूरे भारत जी भी प्रसिद्ध आसा। कुल्लू टोपी रे आगू बाखे रंगीन पाटी लागी दी हुआ जुण ऐसा एक विशिष्ट रूप दिया। अलग अलग क्षेत्र जी ऐसा पाटी रे रंग होर डिजाइन किस भिन्नता भाने ले मेड़ा। ऐसा टोपी वे इधारे लोग सम्मान गौरव होर सांस्कृतिक पहचान रो प्रतीक मोना। कुड़ू जिले जी बेटली रे पारंपरिक जिकड़े अत्यंत शुभले होर आकर्षक हुआ। बेटली मुख्य रूपा के पट्टू बाना। पट्टू एक मोटो ऊनी जिकड़ो हुआ जुण शरीर बे गरम डाणे संगे संगे सुंदरता भी प्रदान किया। एव पट्टू बे विशेष डंगा सिथी ओढ़ा होर चौंदी रे आभूषणा संगे एवरी शोभा होर भी बढ़ी जा। बेटली रे पहनावा जी रंगा रो विशेष महत्व हुआ। त्यौहार मेड़े होर

धार्मिक आयोजना जी महिला चमकीले रंगारो पट्टू बाना। लाल, हरो, गुलाबी होर नीलो रंग विशेष रूपा के पसंद केरा। इना रंगा जी कुल्लवी संस्कृति जीवंतता होर उत्साह भानले ले मेड़ा। शोभले माणू कुड़ूरे पारंपरिक परिधाना संगे चौंदीरे गहनेरो विशेष महत्व आसा। बेटली हार, कांगण, बाड़ी, चंद्रहार, टुमरी, डोरो होर अनेक पारंपरिक आभूषण बाना। ई आभूषण तिनारी सुंदरता बे बढ़ाने संगे संगे सांस्कृतिक पहचान भी दर्शावा। कुड़रे ई जुण जिकड़े आसा इना स्थानीय उन्नासीथि तैयार केरा। इदी मांजे भेड़ पालनेरो जुण परंपरा आसा बेगे प्राणी आसा। भेड़ भाकरी के मेड़ी दी उना बे साफ केरी करे धागे जी बदली दिया। देखो हथ करगे सोंगे सुंदर वस्त्र तैयार किया। ओ प्रक्रिया मेहनती होर कौशला संगे भरपूर हुआ। हथकरघा उद्योग कुड़ूरी अर्थव्यवस्था जी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हजारों परिवार एवं कार्य संगे जुड़े दे आसा। विशेष रूपा के जुण बेटली आसा सी बुनाई कार्य जी महत्वपूर्ण भूमिका निभावा। तिने द्वारा तैयार केरे दे जिकड़े जिता मंजे शॉल, पट्टू, जराबा, स्वेटरी होर अन्य उन्नी उत्पाद देश विदेशा जी सराहे जा। शोभले माणू कुल्लू दशहरे रे दौरान इधरे पारंपरिक परिधाना जी सुंदरता विशेष रूपा के भानले ले मेड़ा। एहू प्रसिद्ध उत्सवा जी लोग पारंपरिक विशेष जुण वेशभूषा आसा धारण केरी कोरे देव देवतेरी शोभा यात्रा जी भाग लिया। रंग बिरंगे वस्त्र होर पारंपरिक टोपी पूरे वातावरण जी सांस्कृतिक रंग भरी दिया। शोभले माणू समय स्थिति पहनावे जी आधुनिकता रो प्रभाव जरूर पड़ो ते भी कुड़ूरे जुण लोग सा सी अपनी पारंपरिक वेशभूषा गोए गर्व केरा। शादी ब्याह, धार्मिक कार्य, मेड़े होर त्यौहारा रे अवसरा जी लोग पारंपरिक परिधान बनने ही पसंद केरा। तेजी एवं संदेश संगे कार्यक्रम रो दूजो पड़ाव भी समाप्त हुओ। हैवे पेश सा एक होर शुभ लोजो कुल्लवी लोकगीत तमा सभी ले।

तहज़ीब शुभले माणू यशवंत आज़ादारी आवाज़न तुम्हें सुनो और शुभलो कुलवी लोकगीत ते कार्यक्रम हुई ग वक्त साक्षी ठाकरा बेदया इजाज़त नमस्कार।

0: travel to Iran for unavoidable reasons are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant, and maintain constant situational awareness. The embassy also urged them to closely follow local developments through credible sources and comply with instructions issued by local authorities. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran and those arriving in the country to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. Vishnu P.S., Akashwani News, Delhi.
1: India and Russia are working to further enhance their bilateral trade with a target of reaching $100 billion by 2030. Speaking at the 12th Primakov Readings Forum in Moscow, Kremlin spokesman Dmitry Peskov described India as one of the world's fastest-growing economies and highlighted its vast potential. He also termed the India-Russia relationship as a privileged partnership strengthened through cooperation in various international organizations. IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall in northeast India as well. In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in Group B match at Vancouver in Canada tonight at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In another Group B fixture, Bosnia and Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसानों और बागवानों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।
3: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बागवान भाई बहनों को हमारा
4: नमस्कार।
3: किसान भाइयों, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा।
4: और मैं हूं राजेंद्र।
3: राजेंद्र, कैसे हैं आप?
4: निशा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान और बागवान श्रोता भी ठीक ठाक होंगे, इस समय हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे होंगे। क्योंकि निशा, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज एक महत्वपूर्ण विषय कृषि, बागवानी और पशुधन से संबंधित लेकर आते हैं।
3: जी बिल्कुल राजेंद्र, कृषि की अगर बात करें तो आजकल क्या क्या कार्य हमारे कृषि में चले हुए हैं?
4: देखिए, आजकल खरीफ फसलों की बिजाई भी तैयारी पर है।
3: हाँ जी,
4: कुछ निचले क्षेत्रों में तैयारी और बिजाई हो चुकी है और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बिजाई जारी है।
3: जी बिल्कुल।
4: देखिए, समय रहते अब मौसम भी करवट ले रहा है। निशा जी, देखिए अब मानसून भी आने वाला है, तो हमें समय रहते अपने खेतों में जल निकासी का अच्छा प्रबंध भी कर लेना चाहिए।
3: जी बिल्कुल। और देखिए, अगर खरीफ की फसल की बिजाई अभी आपने नहीं की है तो किसान भाइयों, अपने क्षेत्र और जलवायु के अनुसार ही आपने किस्मों का चयन करना है, क्योंकि क्षेत्र और जलवायु के अनुसार अगर आप अनुमोदित किस्में लगाते हैं तो आपकी फसल जो है उसका बचाव रोगों से भी होता है और अच्छा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए आपने किस्मों का ध्यान जो है वो जरूर रखना है। और रही बात लगी हुई सब्जियों की, तो अब मौसम बरसात का आने वाला है, तो ऐसे मौसम में खरपतवार जो है वो तेजी से बढ़ते हैं, तो किसान भाइयों, अपनी लगी हुई फसलों में से आप समय समय पर खरपतवार निकालते रहें और अपनी फसलों का निरीक्षण करते रहें कि कहीं उनमें किसी तरह के कोई रोग जो है वो तो नहीं लग गए, और अगर किसी रोग के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप समय रहते उनका उपचार भी करें।
4: जी
3: तो राजेंद्र, आज क्या कुछ खास लेकर आए हैं अपने किसान बागवान भाई बहनों के लिए?
4: निशा, काम की बातों में हम बात करेंगे कड़ू और पतीश की खेती के बारे में, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोक गीतों से, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा खरीफ मौसम में किए जाने वाले कार्य।
3: जी बिल्कुल। तो जैसा कि राजेंद्र आपने कहा, बात आज हम करेंगे कड़ू और पतीश की खेती के बारे में। ये औषधीय पौधे हैं और सभी लोग जानते हैं कड़ू और पतीश के बारे में, क्योंकि औषधीय पौधे मानवता के लिए मूल्यवान धरोहर होते हैं। आधुनिक विश्व में इस बहुमूल्य वन संपदा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पुराने समय से ही लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए इन वन औषधियों पर ही निर्भर रहे हैं।
4: जी, प्रदेश में पाए जाने वाली लगभग 3500 ज्ञात और वनस्पति प्रजातियों में 640 प्रजातियां औषधीय गुणों से युक्त हैं, जिसमें कड़ू, पतीश, रतनजोत, कालाजीरा, बनककड़ी, रखाल, धतूरा, कशमल, सोमलता, पुष्करमूल कुठ बनक्षा जटा

0: मांसी, सर्पगंधा, ब्रह्मी, गुड़मार यहाँ प्राकृतिक रूप से भी उपलब्ध है।
1: तो बात कर लेते हैं कड़ू के बारे में। कड़ू जो है, जिसे कुटकी, कड़वी, जो कि ठंडे क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। ये पौधा 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा और बहुवर्षीय पौधा है। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं और आरी की तरह कटी हुई होती हैं। इसमें मई से सितंबर तक हल्के नीले या सफेद रंग के फूल आते हैं। कड़ू का उपयोग जो है, उसका तना और जड़ है, जिससे कि कई बीमारियों में उपयोग किया जाता है।
0: जी हाँ निशा, प्राकृतिक अवस्था में ये पौधा 2700 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र जिला चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, मंडी, किन्नौर और लाहौल में झरनों के निकट आर्द्र चट्टानों पर, ढलानदार और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। अगर बात करें इसकी भूमि और जलवायु की, तो इस पौधे की सफल खेती के लिए 1800 मीटर की ऊंचाई से ऊपर वाले ढलानदार, ठंडे बर्फीले क्षेत्र, जैविक कार्बन और गली सड़ी खाद युक्त रेतीली दोमट मिट्टी, आंशिक छाया वाले नमदार स्थान उपयुक्त रहते हैं।
1: जी बिल्कुल राजेंद्र, और उत्पादन की विधियों की अगर हम बात करें, इसका जो है उत्पादन बीज द्वारा या फिर तना की कलमों द्वारा किया जाता है। बीज की अगर हम बात करें कि बीज के द्वारा इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, तो किसान भाइयों, कड़ू के बीज सितंबर अक्टूबर के महीने में स्वस्थ मातृ पौधों से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था में ये बीज बर्फ के नीचे दबे रहते हैं और बर्फ पिघलने पर कई पौधे एक साथ अंकुरित होते हैं। बीज बिना आवरण वाले मुलायम होते हैं और छोटे होते हैं। अगर बीजों को कम तापमान पर बिना नमी के भंडारित किया जाए, तो उनमें 4 से 6 महीने तक बीजा अंकुरण की क्षमता रहती है। बिजाई की ट्रे में मिट्टी, रेत और जैविक खाद का मिश्रण भरकर ऊपरी सतह पर बीजों की बुआई करते हैं। अगर बिजाई के उपरांत इन्हें काई या सूखे घास की पतली तह से ढक दिया जाए, तो बीजों का अंकुरण 60 से 75% तक होता है। अगर पौधे जल्दी बढ़ जाएं और जरूरी हो, तो लगभग 30 दिन के बाद पौधों का प्रत्यारोपण जो है, वो दूसरी ट्रे में कर दिया जाना चाहिए।
0: जी हाँ, अगर बात करें तना की कलमों द्वारा उत्पादन की, तो बीजों द्वारा कृषिकरण करने की तुलना में तनों की कलम द्वारा खेती करने से कम समय में अधिक उत्पादन संभव हो सकता है। रोपण से पहले तना कलमों का 200 ppm IBA हार्मोन से उपचार कर सरल उपाय जैसे 24 से 48 घंटे तक पानी में डुबोकर कायिक प्रबंधन सफलतापूर्वक करवाया जा सकता है। मिट्टी में 2x2x2 फुट वाली खाई बनाकर तना कलमों में जड़ें निकलवाना भी प्रसारण की एक अन्य सुगम विधि है। इसके अतिरिक्त जूट की बोरियों में भी कलमों को 8 से 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तना के शीर्ष भाग से प्रसारण करने में अधिक सफलता प्राप्त होती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि तनों के अग्रभागों को फसल की कटाई के समय अलग रखकर अगली खेती के लिए प्रसारण सामग्री की तरह प्रयोग करें। तना की कलमों से कुटकी की खेती का सबसे बड़ा लाभ फसल का दूसरे या तीसरे साल तैयार होना। यदि कलमें उच्च गुणवत्ता वाले स्वस्थ मातृ पौधों से ली गई हों, तो फसल की पैदावार और गुणवत्ता भी अच्छी होगी।
1: जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं पतीश के बारे में। पतीश भी एक औषधीय पौधा है और इसकी पत्तियां जो हैं, वो चमकीली होती हैं और ऊपरी भाग की पत्तियां छोटी और हृदय के आकार वाली होती हैं। इसमें जुलाई अगस्त के महीने में नीले या फिर हरिताभ नीले या बैंगनी फूल आते हैं, जो कि 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। सितंबर में बीज बनना शुरू हो जाता है और अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर में बीज पक जाता है। पकने पर बीज का रंग गहरा भूरा या काला हो जाता है। इसकी जड़ द्विवर्षीय कंदिल होती है, जिसमें 2 कंद होते हैं। एक कंद पिछले वर्ष का और दूसरा नए साल का मूल कंद से जन्मा हुआ। पतीश के कंद विषैले होते हैं, किंतु अच्छी तरह से शोधन करने के बाद इनका प्रयोग जो है, नियमित मात्रा में विभिन्न बीमारियों में किया जा सकता है।
0: जी हाँ, पतीश की अच्छी फसल के लिए शीत, आर्द्र और समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। ढलानदार धूप वाली भूमि इस पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। पौधे के अच्छे निकास के लिए रेतीली दोमट, अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6 हो, घास पत्ती युक्त और अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। सामान्य दशाओं में 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र और रेतीली जैव तत्व संपन्न मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी गई है।
1: जी बिल्कुल। तो राजेंद्र, ये तो बात हुई कड़ू और पतीश की खेती के बारे में। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अपने किसान बागवान भाई बहनों को सुनवाते हैं समूह स्वरों में ये लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनने का, जिसका विषय है खरीफ मौसम में किए जाने वाले कार्य। डॉक्टर समीर शर्मा से बातचीत करेंगे अशोक।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, समय समय पर हम आपके लिए समसामयिक जानकारी लेकर आते हैं। और आजकल खरीफ का मौसम चला है और खरीफ के मौसम में काफी कुछ काम आपको अपने खेतों में करने होते हैं। खरीफ की इन फसलों से अच्छा उत्पादन आप किस तरह से लें और कौन कौन से मुख्य कार्य इन दिनों आपको करने होते हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर

0: समीर शर्मा जी। डॉक्टर समीर शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, बात चली है खरीफ की फसलों के बारे में, तो सबसे पहला आपसे यही जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम के बारे में आप बताएं, और इस मौसम में कौन कौन सी फसलें जो है इन दिनों किसानों के खेतों में लगी होती है।
1: जी किसान भाइयों, मुख्यतः हमारे जो साल में दो सीजन मुख्यतः आते हैं, एक खरीफ सीजन आता है, एक रबी
0: जी
1: सीजन आता है। जो रबी सीजन आता है वो हमारे सर्दियों में शुरू होता है, उसको हम के हिसाब से हम उसको अक्टूबर से लेके मार्च तक लेते हैं। इसी
0: जी
1: तरह जो खरीफ सीजन आता है, जो गर्मी में और बरसात के टाइम जो सीजन आता है, उसको हम खरीफ सीजन कहते हैं। और इसमें मुख्यतः हमारे जैसे धान हुआ, मक्की हुई, दालों में माश, मूंग, अरहर, कुल्थी, राजमाश, तिल, सोयाबीन इत्यादि फसलें आती हैं। इसी तरह जो हमारी सब्जियां भी आती हैं, उस भी जैसे हमारे कद्दू वगैरह आते हैं, घिया हुए, कुकुम्बर हुए, शिमला मिर्च हुई, भिंडी हुई इत्यादि, इस तरह की सब्जियां भी इस सीजन में आती हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, बात चली है खरीफ मौसम में कृषि विभाग के प्रबंधन के बारे में, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मौसम में किसानों को क्या क्या सावधानियां रखनी
1: जी
0: होती
1: हाँ,
0: है।
1: देखिए जैसा आपने देखा कि जो हमारा खरीफ सीजन वो बरसात के टाइम आता है,
0: जी
1: तो बरसात के टाइम में हमारे जो कीट हुआ, खरपतवार हुए या कोई रोग, उनका प्रकोप बहुत से ज़्यादा होता है। इसलिए किसानों को इसके लिए बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जब भी किसान भाई अपने खेतों जाते हैं, तो वहां पे जाके देखें कि वहां फसल में कोई कीट का प्रकोप ना हो या कोई बीमारी का प्रकोप ना हो, तो ये इसमें इसमें जाकर उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर लगे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे जो जो साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी के, हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके उस तरह का उस पर स्प्रे करें। और इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है बरसात में पानी खड़ी रहने की समस्या आती है, उससे कई बार जो हमारी फसलें होती हैं उनमें सड़न रोग लग जाता है, खासकर मक्की में। मक्की में बहुत बार देखा गया है कि पानी खड़ा रहता है और फसलें सड़ने शुरू जाती हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उससे में भी किसान भाइयों को भी निकासी कर देनी चाहिए साथ साथ ही। तो इन
0: जी
1: चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए।
0: जी डॉक्टर
1: जी
0: साहब, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में कृषि विभाग ने खाद्यान्न के क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए
1: हाँ
0: हैं।
1: जी, देखिए ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं हमारे विभाग ने। तो उसमें इस साल जो हमारा जो खरीफ सीजन का है, उसमें 8.94 लाख टन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। इसमें हमारा मुख्यतः धान आता है, धान हुआ, मक्की हुआ, दलहन हुई, मिलेट हुए, हमारे कुछ आलू सब्जी हुई, अदरक हुआ। तो जैसा धान है, हमारा इस बार जो लक्ष्य रखा गया वो 76,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर इसको बोने का लक्ष्य रखा गया है,
0: जी
1: और जो इसका उत्पादन लक्ष्य है वो हमारा 1.32 लाख टन के आसपास रखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारा मक्की हुआ, इसका लक्ष्य जो है 2,94,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर रखा गया है, और इसका जो उत्पादन लक्ष्य है, ये हमारा मेजर है। ये जो हिमाचल में मक्की देखा गया बहुत ही मैक्सिमम जगह उगाई जाती है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: इसका जो लक्ष्य है वो हमारा 7.4 लाख टन के आसपास रखा गया है। इसी तरह हमारी दालें हैं,
0: जी
1: इसका जो हमारा क्षेत्र जो हमने इसका लक्ष्य रखा है वो है 17,500 हेक्टेयर क्षेत्र के आसपास रखा है, और जो इसका उत्पादन लक्ष्य है वो 16,000 टन के आसपास रखा गया है ना जी। इसके
0: जी
1: साथ एक आलू देखा होगा, आलू हमारी हिमाचल बहुत ही मेजर क्रॉप है,
0: बिल्कुल जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसका जो हमारा उत्पादन लक्ष्य है वो 1.65 लाख टन के आसपास रखा है। इसी तरह सब्जियां जो देखा होगा कि हमारे जो सब्जियां जो गर्मी में उगाई जाती हैं वो हमारे नीचे प्लेन तक जाती हैं,
0: जी
1: जबकि
0: जी
1: उस टाइम प्लेन में ये सब्जियां नहीं होती हैं।
0: बिल्कुल जी
1: तो हमारा जो इसके अंदर जो लक्ष्य रखा है वो 48,000 जो हमारा हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर इसको उगाने का लक्ष्य रखा है, और इसके अंतर्गत हमारा जो उत्पादन लक्ष्य है वो है 9.45 लाख टन के आसपास रखा गया है। इसी तरह अदरक एक हमारी और बहुत ही कैश क्रॉप है, इसका हमारा 28,000 हेक्टेयर के अंतर्गत इसका लक्ष्य रखा गया है, और जो इसका उत्पादन लक्ष्य है वो 32,000 टन के आसपास रखा गया। तो ये जो मुख्यतः जो मेन मेन जो लक्ष्य हमने रखे हैं, ये आपको मैंने बताया किसान भाइयों के लिए, ये है हमारे मुख्यतः लक्ष्य जो है।
0: बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, इसके
1: जी
0: साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विभाग द्वारा इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या-क्या प्रबंधन किए गए हैं।
1: हाँ जी, देखिए जैसे हमारे ये लक्ष्य रखे हैं, तो हमारे विभाग का ये पत्र रहता है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करें, इसलिए
0: बिल्कुल जी
1: किसानों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करनी पड़ती है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो इस साल का हमारा जो टारगेट है, जो 25,000 क्विंटल सीड के आसपास हमारा किसानों में वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हमारा धान जो मुख्यतः वो 600 क्विंटल के आसपास, मक्की 400 क्विंटल के आसपास, जो दालें हैं वो 390 क्विंटल के आसपास, और तिल जो तिलहन है वो 100 क्विंटल के आसपास इनको किसानों में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी एक खाद्य हैं, जो
0: जी
1: रासायनिक खाद्य आती हैं, वो 21,000 टन के आसपास इसका हमने लक्ष्य रखा है जो किसानों में वितरित करने का। इसके साथ साथ एक हमारे बायो फर्टिलाइजर आते हैं, जीवाणु खाद्य, जो
0: जी
1: कि जिसको डालने से जैसे उसकी खेती बाड़ी और बढ़ती है, वो हमारे 100 टन जीवाणु खाद्य के आसपास हमने लक्ष्य रखा है किसानों में वितरित करने का। इसके अंतर्गत एक दवाइयाँ आती हैं, उसका
0: जी
1: भी लक्ष्य रखा हमने 80 टन के आसपास वो किसानों में वितरित करने का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ हमारे जो एक उपकरण आते हैं, औजार आते हैं, जो नीरव हमारे इस खरीफ सीजन में हमने किसानों में 50,000 से 60,000 के आसपास उसको वितरित करने का लक्ष्य रखा है ना जी।
0: जी
1: इसके अंतर्गत हमारा जो 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है। इस तरह हमारा जो मेजर ये लक्ष्य है, जो जिससे किसानों की पैदावार अधिक से अधिक बढ़ सके और

0: हमारा उत्पादन और ज्यादा बढ़ सके।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या विभाग द्वारा उपचारित बीज किसानों को दिया जा रहा है, और अगर किसान अपना बीज उपचारित करके लगाना चाहे तो उसके लिए वो क्या कर सकते
0: जी
1: हैं?
0: हाँ, विभाग जो अपना जो भी बीज है वो उपचारित बीज किसान मित्र प्राप्त है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बीज ना भी हो तो उसे विभाग उसमें हमारे कार्बनिजन दवाई आती है, कार्बन नाम से दवाई आती है जो इसको ट्रीटमेंट के लिए काम आती है, तो वो डाल के किसानों में वितरित करता है।
1: जी
0: और कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कई जो बीमारियाँ आती है वो हमारी सॉइल से आती हैं, तो जब भी या बीज से आती हैं, तो जब भी वो बीज या ना बोना चाहें अपना बीज, तो वो ट्रीटेड ना हो तो उसको हमेशा इसको उपचारित करके इसको बोए। इसके लिए
1: जी
0: किसान भाई एक हमारी कार्बनिजन दवाई आती है, उसको 2 ग्राम लेके उसको 1 किलोग्राम सीड के अंदर मिला के उसको अच्छे से मिला के उसके बाद उपचार कर उसको बोए, तो इससे क्या होगा जो भी आपकी 20 लीटर को बीमारी होगी वो उसमें कम हो जाएगी या नहीं आएंगी उसमें।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि मिट्टी परीक्षण जो है फसल उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
0: जी
1: विभाग इसके लिए क्या-क्या कर रहा है?
0: देखिए, मिट्टी परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है इसका उत्पादन का। तो किसान भाई जब भी अपनी फसल बोए उस एटलीस्ट 3 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण जरूर अवश्य करवाएं,
1: जी
0: क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमारे खेतों में किसी हमारा तत्व तो होता है उसकी मात्रा ऑलरेडी बहुत होती है, बट हम फिर भी वो खाद डालते रहते हैं, या
1: जी
0: कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो मात्रा होती नहीं है वो उसकी और हम उसको डालते नहीं है। तो जब भी किसान भाई अपने फसल बोएं उससे पहले एक मिट्टी परीक्षण का अवश्य कराएं एटलीस्ट 3 साल में। और इसके लिए विभाग ने हर हमारे जिला स्तर पर एक एक लेबोरेटरी खोल रखी है, और हमारे सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम भी चली है जिसे हम किसानों को एक सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित कर रहे हैं।
1: जी
0: तो हमारे जो हमारे अधिकारी हैं फील्ड लेवल पे ब्लॉक लेवल पे वो भी हमारे खेतों में किसानों के खेतों में जाके उसका मिट्टी सैंपल लेते हैं और उसकी जो उसकी टेस्टिंग वो हमारे सॉइल लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है, तो वो भी खेतों में जाके इनको टेस्ट करती है
1: जी
0: मिट्टी
1: डॉक्टर
0: को।
1: साहब, क्या ये मिट्टी परीक्षण का कार्य मुफ्त में किया जाता
0: जी
1: है?
0: हाँ जी, देखिए ये हमारा 100% पूरा मुफ्त में किया जाता है। जब भी किसान भाई जब भी चाहे कोई ऐसा अपना सैंपल टेस्ट कराना चाहते हैं तो हमारे जो नजदीक के किसी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं,
1: जी
0: और अगर अपना सैंपल भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं सैंपल आके। बट उसके एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब भी वो सैंपल लें तो एक तो सबसे पहले कि जो वहाँ पे कोई रासायनिक खाद उन्होंने दी हो या कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किया हो या कोई जहाँ पानी की कुल उससे सैंपल ना लें। हमारे जो खेत से 5 जगह सैंपल लेके जहाँ घास उठा के उसको अच्छी तरह मिला के उसके 4 हिस्से कर लें, और जब तक करें तब तक आपका सैंपल आधा किलो ना आ जाए,
1: जी
0: और उसके बाद वो अच्छी तरह मिट्टी इसको कपड़े में बांध थैली बांध के उसको उसका क्रॉप जो आपने आगे बोनी है और अभी क्या बोई थी उसका डिटेल नाम डाल के अपने जो साथ के नजदीक के कृषि अधिकारी को दे दे, तो आपकी सॉइल टेस्ट हो जाएगी पूरी।
1: जी डॉक्टर समीर शर्मा जी, जो कृषि विभाग बीज खाद और कीटनाशक किसानों को देता है, उसकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जा सकती
0: हाँ
1: है?
0: जी, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कई
1: जी
0: बार देखा गया कि किसान भाइयों को जो बीज मिलते हैं कई बार वो कसौटी खड़े नहीं उतरते हैं, कई बार क्या होता है कि बीज उगते नहीं है। इसलिए विभाग ने एक हमारे जिला स्तर पे भी और स्टेट लेवल पे भी एक हमारे इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर हुए, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हुए, सीड इंस्पेक्टर, वो नॉमिनेट कर रखे हैं।
1: जी
0: इसके अंतर्गत हमारे वो डीलर से हुए उनसे खाद के हुए या दवाइयों के नमूने लेते हैं। इसी के अंतर्गत विभाग ने इस खरीफ सीजन में 1,000 खाद के नमूने, 150 कीटनाशक के नमूने और जो हमारे 400 बीज के नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया है जिससे इनकी क्वालिटी चेक हो सके।
1: इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विभाग किसानों को कृषि विविधीकरण के लिए क्या-क्या प्रयत्न कर रहा है?
0: जी हाँ, देखिए हमारा मेन जो है आजकल देखा किसान हमारे जो ट्रेडिशनल खेती से लेकर अब कृषि विधिकरण की ओर बढ़ावा दे रहे हैं जिससे किसानों की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके लिए हमारा हम वेजिटेबल जो हमारी सब्जियों को उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम
1: जी
0: किसानों को इस पे हमारा एक जायका प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत हमारा हम सब्जी उत्पादन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ साथ हमारे एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी एक सब्जी उत्पादन के अंतर्गत एक हमारे प्रोजेक्ट है। हम इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए सब्जी उत्पादन की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं।
1: आमतौर पर इस मौसम में बीमारियों व कीटों का बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाता है, क्या विभाग ने संरक्षित खेती के लिए कोई प्रयास किए हैं जिससे किसानों को कम खर्चा पड़े और आमदनी भी
0: हाँ
1: जो है
0: देखिए,
1: ज्यादा प्राप्त हो?
0: इसके अंतर्गत हमारे पॉली हाउस परियोजना है जिसके अंदर डॉक्टर 22 पवार किसान स्वराज योजना,
1: जी
0: इसके अंतर्गत हम किसानों को पॉली हाउस बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत 85% हम सहायता उपदान किसानों को दे रहे हैं। इसमें हमें पॉलिस के अंदर खेती लगा के जैसे आप कीटनाशक भी कम पड़ेगा, कीटों का प्रभाव कम रहेगा, बीमारियां भी कम लगेगी, तो इस योजना के अंदर किसान ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर
0: जी
1: साहब, कई बार खेत में कार्य करते समय कोई दुर्घटना किसान के साथ हो जाती है, तो क्या विभाग किसानों के लिए कोई योजना इसके लिए चला रहा है?
0: जी हाँ, इसके अंतर्गत हमारी एक योजना चली है जिसको मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के नाम से कहते हैं। इसके अंतर्गत जब भी कोई दुर्घटना होती है किसी किसान भाई की, जैसे कोई असंभव कोई अंकड़ जाता है या

0: कोई दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो उसमें हम 10,000 से लेके 1.5 लाख तक उसको एक मुआवजा राशि दे रहे हैं योजना के अंतर्गत।
1: जी
0: तो जैसे मृत्यु होने 15,000 पे आंशिक रूप से, जैसे कोई उंगली कटती है 10,000 पे, कोई 3 उंगली के कट जाने पे 20,000 पे, एक बाजू जो टांग कटने पर 30,000 पे, इस तरह के हम इस पे इस योजना के अंतर्गत किसानों को सहायता दे रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ बात चली है खरीफ मौसम की, तो खरीफ मौसम में कई बार बारिश, आंधी और तूफान से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो
0: जी
1: जाता है। इनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या विभाग ने कोई योजना बना रखी है?
0: हाँ जी, देखिए इसके अंतर्गत हमारी दो योजना है, एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अंतर्गत हमारा जैसे मक्की हुआ, धान हुआ, इसके अंदर हम इनको बीमा योजना के अंदर कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी एक वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसके अंदर भी हम कुछ क्रॉपे हैं जैसे टमाटो हुआ, अदरक हुआ, आलू हुआ, इन क्रॉपों को इनके अंदर कवर कर रहे हैं। तो किसान भाई इसके जब भी कोई अपने फसल उगाते हैं तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपने को कवर करें, इसी योजना के अंदर अपने को लाएँ।
1: जी डॉक्टर साहब, आज के परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्या विभाग इस खरीफ मौसम में किसानों को फसलों से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध करवा रहा
0: जी
1: है?
0: जी देखिए, आज देश में जो सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसके अंतर्गत हमारे किसान भाई को हमारे एक SMS ब्लॉक ब्लॉक स्तर से भी जा रहे हैं, स्टेट लेवल से भी जा रहे हैं और जिला स्तर से भी, किसानों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है हमारा
1: जी
0: कि क्या कैसे कोई खेती करनी है आपने, क्या हमारी स्कीम आई है, इस तरह के सब मैसेज हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। और इससे क्या हो कि आपको इंस्टेंट जानकारी मिल जाती है उसी टाइम खेतों पर कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही तो मेरे को क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ एक किसान कॉल सेंटर है
1: जी
0: जो हमारा सुबह 6 से लेकर शाम को 10 बजे तक चलता है, और ये हमारा अभी हिमाचल के लिए चंडीगढ़ बेस्ट पे है। तो किसान भाई जब भी कोई प्रॉब्लम हो किसी टाइम, तो किसान भाई बेफिक्र, उसका नंबर है मैं किसान भाइयों के लिए बताना चाहता हूँ, 1800-1850-1551। तो किसान भाई जब भी चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
1: जी यानी कि किसानों को अब वरे परे ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: है
0: जी
1: और
0: जी
1: सीधे फ़ोन के द्वारा ही वो समस्या का
0: जी जी
1: समाधान पा
0: जी
1: सकते
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अंत में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: जी मेरा ये संदेश रहेगा कि दो तीन चीज़ें, जब भी आप खेती बाड़ी करें अपने सुरक्षा के हिसाब से करें, और जब भी किसी चीज़ की जरूरत हो, आपको किसी भी चीज़ की कोई हेल्प जरूरत हो, तो आप हमारे निसंकोच हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं किसी भी ब्लॉक लेवल पे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, उसमें जाके अपनी समस्या बताइए और उसका समाधान पाइए।
1: जी डॉक्टर समीर शर्मा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने खरीफ मौसम में कृषि विभाग के प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ मौसम में किए जाने वाले कार्य, इस विषय पर आपने जानकारीपूर्ण बातचीत सुनी जिसमें डॉक्टर समीर शर्मा से जानकारी हासिल कर रहे थे अशोक। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, इससे आप जरूर कुछ ना कुछ लाभ उठाएंगे। जानकारी के बाद अब फिर से समय है मनोरंजन का, तो आइए करनैल राणा की आवाज में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में समय हो चला है कल के आकर्षण का। कल हम काम की बातों में बात करेंगे पुष्प उत्पादन से दोगुनी आय के बारे में, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोकगीतों से और सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी। तो निशा जी, घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। कार्यक्रम अभी आपने सुना मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।

0: आज शाम 8 बजे धारावाहिक गीत में आप सुनेंगे राज प्रभाकर, टिक्कम राम शर्मा, कली चौहान के गाए लोकगीत। रात 8:30 पर सुगम संगीत में आज के गायक कलाकार हैं सुनीता रघुवंशी और सुमिता सक्सेना। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है। 7:45 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के धर्मशाला और हमीरपुर केंद्रों के साथ ही FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप DTH सेवा पर भी सुन सकते हैं।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले।

0: रक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
0: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने चक्का जाम करने का फैसला लिया वापस, अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे कर्मचारी। कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान चुनी गई नाहन नगर परिषद की अध्यक्ष। भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा बने उपाध्यक्ष। वहीं चंबा पंचायत समिति पर भाजपा का कब्जा। सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिला में मारकंडा नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन। हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा लाभ। किन्नौर जिला के रारंग में राज्य स्तरीय गुरु सांगिस पर्व संपन्न। छम नृत्य बना आकर्षण का केंद्र और केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आज रिकांगपियो में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने आज आधी रात से चक्का जाम करने के फैसले को वापस ले लिया है और अब कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। अब से कुछ देर पहले शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में कर्मचारी यूनियन ने ये निर्णय लिया। ये बैठक सफल रही और सरकार ने कर्मचारियों की सभी जायज़ मांगों को मान लिया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज दोपहर शिमला में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कर्मचारी यूनियन से जनहित में चक्का जाम करना की फैसले को वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लागू किया है और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया था।
1: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: नाहन नगर परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाए गए। कांग्रेस और भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 7-7 वोट प्राप्त हुए। ऐसे में ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान को अध्यक्ष और भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा को उपाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपमा धीमान ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर शहर के विकास के लिए कार्य करेंगी।
2: हम सभी का जितने भी 13 पार्षद है और इसमें कोई काम में कोई भेदभाव नहीं किया जाता और हम सब एक हैं। इलेक्शन जब तक था तब तक की बात थी, अब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा समर्थित पार्षदों को डरा धमका कर अपने पक्ष में कर

0: करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि नाहन नगर परिषद के 13 वार्डों में से भाजपा समर्थित 7 पार्षद जीते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कानून में तोड़ मरोड़ कर स्थानीय विधायक को वोट का अधिकार दिलाया है।
1: हर प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, परंतु मुझे आज बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनकी पूरी कांग्रेस के भारी भरकम दबाव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट दिया। हिमाचल के इतिहास में यह बात दर्ज हो जाए कि किस तरह से जनता के मत को हाईजैक किया जाता है, वो हाईजैक किया गया।
0: उधर चंबा पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सदस्यों ने बाजी मारी है। आज हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर काजल कुमारी और उपाध्यक्ष पद पर हेम सिंह विजयी रहे। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 9-9 मत पड़े और पर्ची सिस्टम के माध्यम से भाजपा समर्थित काजल कुमारी विजयी रही। उपाध्यक्ष पद पर हेम सिंह ने 2 मतों से जीत हासिल की। भाजपा कल 25 जून को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कल शिमला में होने वाले संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल मुख्य वक्ता होंगे, जबकि 27 जून को पालमपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने आज काला अम पाउंटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मारकंडा नदी के ऊपर बने 180 मीटर लंबे खजूरना पुल का उद्घाटन किया। इस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज व्यस्तता के कारण इस पुल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण नहीं कर सके। इस मौके पर सुरेश कश्यप ने कहा कि इस पुल के बनने से हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए भरपूर धनराशि दे रही है।
2: बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे जिला सिरमौर और विशेष रूप से देहरादून को जाने जाने वाले हमारे यात्री हैं या पर्यटक हैं, उनको होने वाला है। ये पुल जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और लगभग 3.5 वर्षों में इसको पूरा किया, 2022 में इसका काम प्रारंभ हुआ था। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 22,190 करोड़ निवेश के लगभग 35 प्रोजेक्ट जो कि 545 किलोमीटर के लगभग हैं, इसका जो है काम चल रहा है।
0: किन्नौर जिला के पूह उपमंडल की रारंग पंचायत में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु सांगेश पर्व आज बौद्ध परंपराओं के अनुसार संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खराब मौसम के कारण समापन समारोह में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में बौद्ध गुरु छोगेन रिनपोछे ने इस पर्व का दीप प्रज्वलित कर समापन किया। उन्होंने कहा कि ये पर्व पिछले 55 वर्षों से मनाया जा रहा है और 8वीं शताब्दी के महान आचार्य गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। समापन समारोह में छम नृत्य और किन्नौर का प्राचीन रोला रोलाने नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आज रिकांगपियो में ITBP के बेस कैंप में समापन हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने सीमांत क्षेत्रों में बिताए अपने अनुभव साझा किए। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण और सीमावर्ती गांवों के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ITBP के उप कमांडेंट वरेंद्र सिंह और माई भारत के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा भी इस मौके पर मौजूद रहे। राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने की कवायद के विरोध में निगम कर्मचारी महासंघ ने आज धरना प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हुकुमराम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुल्लू, मनाली, रोहडू, रामपुर और कसौली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निगम के होटलों को बंद करने या निजी प्रबंधन को सौंपने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों व प्रक्रियाओं की अनदेखी

0: की जा रही है और बीओडी की मंजूरी के बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। हुकुमराम ने कहा कि राज्य पर्यटन विकास निगम घाटे में नहीं है।
1: आज प्रदेश सरकार हमारे जो 8 होटल है उन्हें ONM बेसिस पे देने की बात कर रहे हैं। हमारी जो कॉरपोरेशन है वो घाटे में नहीं है। हम इसलिए बात करते हैं कि जब से ये ONM की प्रथा सरकार ने लाई है ना, तो ये BOD में ये पास होके गई है, क्योंकि हमारे जितने भी एजेंडे होते हैं वो BOD ही उसके फैसले लेते हैं जो कि हमारे HPTDC के हैं। और इन्होंने बीच बीच में हमारी जो बुकिंग है वो भी बंद कर दी है। इसके बावजूद भी हमारे को ये पर्यटन निगम को ये बोलते कि घाटे में जा रहा है। हमने जब से सरकार बनी है हमने कहा कि हमें 50 करोड़ की आवश्यकता है। अगर ये 50 करोड़ अगर आप हमारे दी जाएगी इसकी ग्रांट के तौर पे, तो मेरे को लगता है कि हमारा टूरिज्म फिर से एक बार फिर अच्छी अपनी पटरी पे आ जाएगा।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिला में चुवाड़ी के छिंज मेले के स्वरूप को बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने आज इस पारंपरिक छिंज मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पठानिया ने कहा कि ये छिंज मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है और इसमें देश के कई नामी पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं।

0: कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिला में चुवाड़ी के छिंज मेले के स्वरूप को बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने आज इस पारंपरिक छिंज मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पठानिया ने कहा कि ये छिंज मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है और इसमें देश के कई नामी पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय जिला स्तरीय पीपलू मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने तनोली से बलह खालसा गांव को जोड़ने वाली सड़क को मजबूत करने के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। HRTC कर्मचारी यूनियन ने चक्का जाम करने का फैसला लिया वापस, अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे कर्मचारी। कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान चुनी गई नाहन नगर परिषद की अध्यक्ष, भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा बने उपाध्यक्ष, वहीं चंबा पंचायत समिति पर भाजपा का कब्जा। सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिला में मारकंडा नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन, हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा लाभ। किन्नौर जिला के रारंग में राज्य स्तरीय गुरु सांगीस पर्व संपन्न, छम नृत्य बना आकर्षण का केंद्र। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आज रिकांगपियो में संपन्न। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी एक साथ रिले किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और FM शिमला से आइए अब सुनिए रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग द्वारा जल शक्ति मंडल नालागढ़ में पैरा स्टाफ पदों की भर्ती सूचना के रोजगार समाचार इस प्रकार से हैं। आपको सूचित किया जाता है कि जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरास्टाफ के विभिन्न पदों को अंशकालिक घंटे के आधार पर भरे जाने हेतु रोजगार सूचना जारी की गई है। उक्त भर्ती का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद भरे जाने हैं, पैरा फिटर के 3 पद, मल्टीपर्पस वर्कर के 25 पद, अर्थात कुल 40 पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 सायं 5 बजे जल शक्ति मंडल नालागढ़ में जमा करने हेतु सुनिश्चित करें। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त भर्ती सूचना का प्रसारण रोजगार समाचार के माध्यम से करवाने का आग्रह किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। एक बार आपको फिर बता दिया जाता है कि पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद, मल्टीपर्पस वर्कर के 25 पद, कुल 40 पदों को भरा जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 तक सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ में जमा करने हेतु सुनिश्चित करें।

0: उक्त भर्ती सूचना का प्रसारण रोजगार समाचार के माध्यम से करवाने का आग्रह किया जाता है ताकि अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला।

आठ बज चुके हैं और ये वक्त है आज का संगीतमय सफ़र शुरू करने का, आपकी रेडियो हम सफ़र रीमा ठाकुर के साथ। और इस सफ़र में आप सुनेंगे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के वो गीत जो आज भी दिलों में अपनी मधुर गूंज छोड़ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

पुराने गीत सिर्फ धुने नहीं हैं, बल्कि यादों की वो अनमोल पोटली है जिनमें बीते दिनों की खुशबू, रिश्तों की मिठास और जीवन के अनगिनत रंग समाए होते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में 12 o'clock फिल्म का गीत, संगीत रचना ओपी नैयर की और शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

कभी रेडियो की धीमी आवाज़, कभी बरामदे में बैठी शाम, कभी चांदनी रातों की तन्हाई, इन गीतों ने हर एहसास को सुरों में पिरोया है। लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं वो कौन थी इस फिल्म का गीत, संगीत रचना मदन मोहन की और बोल हैं राजा मेहदी अली खान के।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कहते हैं कि वेदना को समझने के लिए संवेदना चाहिए, क्योंकि भाषा का अनुवाद संभव है लेकिन भावनाओं का नहीं। FM शिमला के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

वक्त की दरिया में बहुत कुछ बह गया, पर कुछ गीतों का जादू आज भी रह गया। जब भी सुनते हैं वो पुराने तराने, दिल फिर से उन्हीं सुनहरे दिनों में खो गया। तो आइए सुनते हैं काला पानी फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। संगीत से सजाया है एस डी बर्मन ने और शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि समय बदल जाता है लेकिन इन गीतों का जादू कभी कम नहीं होता है। फरिश्ता फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने और बोल हैं जानिसार अख्तर के।

0: पुराने गीतों की महफिल यूं ही सजती रहे, सुरों की ये नदी हर दिल में बहती रहे। मिलेंगे फिर किसी नई शाम, किसी नए फसाने के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए FM शिमला के साथ। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आज बस इतना ही।
1: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

FM शिमला 103.7 MHz के साथ हैं आप। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कहते हैं कि रुतबा तो खामोशियों का मायने रखता है, रुतबा तो खामोशियों का मायने रखता है, अल्फाज भी मुकर जाते हैं हालात देखकर।

लगाव एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से होता है। यहाँ दूरियाँ मायने नहीं रखती, केवल एहसास मायने रखते हैं। लता मंगेशकर और अदनान सामी की आवाज़ों में लक्की फिल्म का ये गीत, संगीत से सजाया है अदनान सामी ने और बोल लिखे हैं समीर ने।

कि रिश्ते आवाज़ देकर नहीं चलते, कदम मिलाकर चलते हैं, धीरे से बिना शोर के। कभी एक रुकता है तो दूसरा वजह नहीं पूछता, बस चाल थोड़ी धीमी कर देता है। निभाना शायद यही होता है, साथ रहने की जिद नहीं, साथ चलने की आदत।

0: फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज एट नाइन के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: अरोड़ा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण

0: कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश

0: दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक फिल्म से।

और आज के इस खूबसूरत सफ़र में हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब मोहब्बत को सरहदों ने चुनौती दी थी, लेकिन एक सच्चे आशिक ने अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से टक्कर ले ली थी। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2001 की ऐतिहासिक सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा की, जिसका निर्देशन किया था अनिल शर्मा ने और मुख्य भूमिकाओं में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी नजर आए थे। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो सन 1947 का विभाजन, चारों ओर दर्द, बिछड़न और अफरा तफरी का माहौल, और ऐसे कठिन समय में एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की मुलाकात होती है सकीना से, जो अपने परिवार से बिछड़ जाती है और तारा सिंह को मिलती है। तारा और सकीना एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं जब तारा सिंह सकीना के स्कूल में सामान देने जाया करता था, और अब विभाजन की इस भगदड़ में दोनों की मुलाकात होती है।

हालात इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और सकीना की जान बचाने के लिए तारा सिंह उससे शादी कर लेता है। दोनों के दिलों में प्रेम का दीप जल उठता है और ये प्रेम केवल दो दिलों का नहीं बल्कि दो संस्कृतियों और दो मुल्कों के बीच इंसानियत का संदेश बन जाता है।

सकीना और तारा का एक बेटा है और दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तभी सकीना को पता चलता है कि उसके पिता अशरफ अली जिंदा है और पाकिस्तान में अपने घर पर है। अशरफ अली सकीना को पाकिस्तान लेकर जाते हैं और वापस हिंदुस्तान आने से उसे रोकते हैं और तारा सिंह को आतंकवादियों से जोड़ने की साजिश रचते हैं।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: गदर फिल्म की कहानी अभी बाकी है, फिलहाल एंजॉय कीजिए इस फिल्म का ये गीत।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज लेकर आए हैं गदर फिल्म की कहानी। और इस फिल्म में क्लाइमैक्स तब आता है जब तारा अपने मासूम बच्चे के साथ अकेले ही पाकिस्तान जाकर अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए संघर्ष करता है और ढेर सारी मुश्किलों का सामना करके अपनी सकीना को वापस अपने देश लेकर आता है। वो कहते हैं कि मोहब्बत जब इम्तिहान देती है तो सरहदें भी छोटी पड़ जाती है। जो प्यार दिल

किया जाए उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। सनी देओल ने तारा सिंह के किरदार में जो जुनून और दमखम दिखाया वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। इस फिल्म के संवाद आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देते हैं और इसके गीतों ने भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई और बेहद लोकप्रिय हुए। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। 9:30 हुए हैं और ये वक्त है आपका एफएम शिमला के साथ जुड़ने का, यानी कि ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुनका। और इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत। तो जल्दी से जाइए अपने ईमेल पे और टाइप कीजिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल और भेज दीजिए ईमेल एड्रेस airfmshimlamusicmail@gmail.com पर। जी बिल्कुल, ईमेल एड्रेस एक बार फिर से नोट कर लीजिए airfmshimlamusicmail@gmail.com। तो जल्दी से भेजिए अपने ईमेल और जुड़िए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, सुनते रहिए।

तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपके प्यार भरे ईमेल्स। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी देवाना का ईमेल है। छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार जाटव संदीप कशिश ने ईमेल भेजा है, अर्पण फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। इसी के साथ सहारनपुर से सुरेश डुकर और संदीप डुकर का ईमेल है, दोस्ती फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। जलंधर से दीपक सोनी और एरावत सोनी ने ईमेल भेजा है। झांसी से आशा जाधव और प्रभा जाधव और लोहारा बालोद से प्रभा राधिका मुखर्जी का ईमेल है। लक्सर हरिद्वार से गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का ईमेल। सहारनपुर से कुशल्या जोशी सुरेश प्रभा और अंबाला से आशु और सोनाली खान का ईमेल है।

इसी के साथ इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी निशा प्रवीण डब्लू अंसारी का ईमेल है और उमर खीर से अजीता और प्रमेला का ईमेल। चमन पार्क दिल्ली से सोनम सना और अदीबा ने ईमेल भेजा है और अजनबी फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। मुलामपुर दाखा से राजेश जैन बिट्टू संजीव और गोटना जैन का ईमेल। मजनू कटिला से कमल बालोजा मधु सागर और उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक का ईमेल है। हरियाणा से बिट्टू भाटिया रिटा रजत और मयंक भाटिया ने ईमेल भेजा है, चरस फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। खंडवा जिला से अब्दुल गफार डावर अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर मोहम्मद उमर राजेंद्र कटारे का ईमेल। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन और पायल जोशी का ईमेल है। तो चलिए आप सभी को सुना रहे हैं दोस्ती फिल्म का गीत।

0: अपना था तू।
1: जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो रोजी पर्ल विलीस डी कैस्ट्रो ने ईमेल भेजा है और ये सुनना चाहते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी का ईमेल है, पड़ोसन फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वानी थांदी का ईमेल है,

लातूर ज़िला से उस्मान शेख, सायरा बानो और करिश्मा का ईमेल है, कोई भी गीत ही सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने ईमेल भेजा है। गंज टुडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा, सायमा, सरफराज,

फराज और मुस्कान का ईमेल। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का ईमेल है। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी का ईमेल है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका गव्या और सुचा सिंह पाठक का ईमेल।

कुम्भार गली कोलगांव से पांडुचंदन उषा चंदन प्रतीक्षा प्रथमेश पांडुरंग कुम्भार का ईमेल है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का ईमेल। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा ने ईमेल भेजा है और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी शहनवाज सुहान अब्बासी का ईमेल। ज़िला हिसार फ्रांसी से राजकुमार दौड़ी प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार का ईमेल है। दरियापुर बाबली से गजानन येले सुशील येले अकोला से आदित्य दामोदर और अरुणा दामोदर का ईमेल। लावारिस फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं।

कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा और अविका का ईमेल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का ईमेल है। चिराग फिल्म का गीत सुनने के लिए ईमेल भेजा है कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर ने। मऊ जिला से मजहर अली अंसारी और गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान प्रवीण का ईमेल। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का ईमेल है।

मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, शशि बाला, किरण गुप्ता और बिपाशा शर्मा का ईमेल है। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु और राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा का ईमेल है। उत्तर प्रदेश दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक का ईमेल। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप का ईमेल है। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का ईमेल। तो चलिए, आप सभी को सुना रहे हैं यादों की बारात फिल्म का गीत सुनने के लिए जो फरमाइश आई है, इस फिल्म का गीत आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं।

अम्बाला हरियाणा से ईमेल है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह का, और ये सुनना चाहते हैं सलाम ए मोहब्बत फिल्म का गीत। भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली का ईमेल है बेवफा फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम का ईमेल है। कपिल भारद्वाज, ज्योत्सना भारद्वाज आदि, ऋतु नेगी ने संजौली शिमला से ईमेल भेजा है और अप्रैल फूल मूवी का गीत ही सुनना चाहते हैं। जलंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती, प्रवीण गुजराती,

अमरावती से हीरामन शिंदे सिद्धार्थ गोडाने का ईमेल है। झारखंड से एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम का ईमेल। कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा अजय कुमार गुप्ता अन्विका तन्नुश्री गुप्ता का ईमेल। बदतमीज फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। कासगंज उत्तर प्रदेश से गीता नायक योगेंद्र निहारिका सुशांत नायक का ईमेल है। गाजियाबाद से सीमा गांधी मनोहर लाल छत्तीसगढ़ से कबीर टोम राधिका और पूजा का ईमेल है। पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्य मल्होत्रा कोयल मल्होत्रा नानक चंद मल्होत्रा का ईमेल। रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल और डुगू भाविक सिक्का का ईमेल है। दतरेंगी से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का ईमेल। सड़क फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं।

सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा का ईमेल है। लैला मजनू फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय का ईमेल है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार ढिंगिया ने ईमेल भेजा है। मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी का ईमेल। राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता का ईमेल है। बॉबी फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। बिलराम से इरशाद अहमद, शाहजहां, मरियम जैनब का ईमेल। कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत का ईमेल। कन्यादान फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने ईमेल भेजा है।

बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान का ईमेल है। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति और पौरुष का ईमेल। तीसरी मंजिल फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। दिल्ली शहर से अस्मा और आमना प्रवीण का ईमेल है।

राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जांगी का ईमेल।

खंडवा से संदीप कौर और दुर्गा कौर का ईमेल, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का ईमेल है, छुपारी रोडू से तारा सिंह गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा और लोभा राम गुंजेटा का ईमेल है।

0: राजनांदगांव से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता और गजेंद्र गुप्ता का ईमेल है। तो चलिए, आप सभी को सुना रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का गीत सुनने के लिए जो फरमाइश आई है। इस फिल्म का गीत आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं।
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत,

एफएम शिमला के साथ हैं आप, 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं गजलें। एक ऐसी महफिल जहां मोहब्बत, तन्हाई, उम्मीद और जिंदगी के रंग गजलों के रूप में बिखरते हैं। लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आइए सुनते हैं ये गजल।

गज़ल सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हर मिसरा दिल के किसी कोने को छू जाता है और अनकही बातों को आवाज़ दे जाता है। आइए सुनते हैं हरिहरन को।

कुछ बातें लफ्ज़ों में बयां नहीं होती, बस गज़ल बनकर ही दिल से रवां होती है। आइए सुनते हैं आशा भोसले को।

गजल सिर्फ शब्दों का संगम नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली हुई वो आवाज़ है जो सीधे रूह को छू जाती है। आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह को।

संगीत की दुनिया में गज़ल एक ऐसी विधा है जो दिल की गहराइयों में उतरकर भावनाओं को शब्दों का रूप देती है। गज़ल कभी मोहब्बत की दास्तान सुनाती है, कभी जुदाई का दर्द बयां करती है, तो कभी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को हमारे सामने रखती है। आइए सुनते हैं चंदनदास की आवाज़ में ये गज़ल।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कि लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, मगर जब बात अपनी हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की आवाज़ों में बाजार फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं। संगीत से सजाया है खयाम ने और बोल लिखे हैं मखदूम मोदीन ने।

संगीत वो एहसास है जो शब्दों से भी आगे निकल जाता है। जब दिल कुछ कहना चाहे तो गीत बनकर गुनगुनाता है। परवाना फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, मदन मोहन की संगीत रचना और कैफी आज़मी के बोल।

किसी की फिक्र करो तो उससे ज़िक्र ज़रूर करना, किसी की फिक्र करो तो उससे ज़िक्र ज़रूर करना, क्योंकि अनकहे अल्फाज अक्सर अनसुने रह जाते हैं।

प्रेम हर रूप में सुंदर होता है, बस उसमें छल ना हो। इसलिए कहा गया है कि तू लाख खूबसूरत सही, वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। सूरज और चंदा, इस फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना और आनंद बख्शी की शब्द रचना।

दिल को आज भी पुराने रास्तों की खुशबू याद है। दिल को आज भी पुराने रास्तों की खुशबू याद है। वो मिट्टी, वो आंगन, वो बेफिक्र हंसी और वो लोग जो अब सिर्फ यादों में रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान लाख आगे बढ़ जाए, दिल आज भी अक्सर पीछे छूटे हुए दिनों में ही सुकून ढूंढता है। सागर फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आर डी बर्मन की संगीत रचना और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

दिनों में ही सुकून ढूंढता है। सागर फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आर डी बर्मन की संगीत रचना और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: इसी के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेजी समाचार के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: वैष्णवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने

0: करने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:10। इसके साथ ही हमारी सायंकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।